उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: कुल

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: KTN News Khanpur Mar jo reporter Azim Sial bazyab na thyo. वारसन खां 1 करोड़ रुपया भुंग तलब अजीम सियाल जी गुजरियल डीं पनो आकल जे कचे मां गाडी मिली हुई। डीआई जी सखर नासराबता पठान अजीम सियाल जी अगवा जी तस्दीक कंदे चयो आए त केटीएन न्यूज़ जो रिपोर्टर अजीम सियाल अगवा थियो आए। बाज़ाबी लाइ संजीदा आहियूं। ड्रोन कैमराउनि ज़रिए मॉनिटरिंग शुरू कई आहे। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं आई जी सिंध साफ़ जे अगवा जो नोटिस वरितो। डीआई जी सखर खां रिपोर्ट तलब। केटीएन न्यूज़ खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, सखर, शहदादपुर, रतोदेरो, बख्शापुर, भानसैदाबाद, न्यू सईदाबाद, ठिकराठो, कश्मोर, डारकी, जरवा, रोहिड़ी, कंबर, कोटड़ीजी, राधण, पनो आकल, तंगवाणी, ठारू शाह, मुरीद शाख, डोकरी, मीरपुर साकरो, अठहठ मोरी, रतोदेरो, गंबट, मदे जी, मुबारकपुर, सगियूं, ड्रिब मेयर शाह, बबरलो ऐं ॿियनि शहरनि में कलम धरणे एहतजाज कयो। साफ़ अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जे शर्तनि खे नाक़ाबिले क़बूल करार ॾेई छॾियो। वधीक ॻाल्हियुनि जो बेमकान ज़ाहिर। संदसि चवणु आहे त उमेद आहे त हलंदड़ हफ़्ते ईरान सां वधीक ॻाल्हियूं थींदियूं। मुआदे लाइ ईरान जा शर्त क़बूल जोगा न आहिनि। इन खां अॻु ट्रंप दावा कई हुई त ईरान जल्द शिकस्त तस्लीम कंदो। जंग ख़तम थींदे ई पेट्रोल बि सस्तो थी वेंदो। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयारु आहे। सफारतकारीअ ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ु न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राजी चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबना अर्म्स खोलण लाइ बि तयारु आहियूं। अमरीका जंग ख़तमु करे असांजा मंजम असां सां बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि। ईरान पारां समुंड में अमरीकी जाचूस अफ़सोस खे हथु करण जी दावा वीडियोस बि जारी कई वई। ईरानी अख़्तियारनि मूजिबि अमरीकी जाचूस अफ़सोस खे सालमत हालति में हथु कयो वियो। अमरीकी अफ़सोस ईरान समुंड में बारूदी सुरंगनि बाबति जाचूसी करे रही हुई। पकड़ियल अमरीकी जाचूस अफ़सोस जी मालियत $10 मिलियन आहे। पाकिस्तान ऐं IMF विच में अॼु बाज़ाबता ॻाल्हियूं शुरू थींदियूं। IMF जो वफ़द इस्लामाबाद पहुची वियो। ज़रिए जो चवणु आहे त ॻाल्हियूं 30 जून ताईं जे अंगनि अखरनि ते थींदियूं। नाणे वारे वज़ीर सां गॾु इक़्तसादी टीम बि ॻाल्हियुनि में हिसो वठंदी। पाकिस्तान तरफ़ां सावरन वेल्थ फंड ऐं गर्दशी कर्ज़ में घटिताईअ ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। IMF खे करंट अकाउंट खसारे प्राइमरी सरप्लस सूरताल खां बि आगाह कयो वेंदो। बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन शोबान जारी। 4 ॾींहनि दौरान 71 खां वधीक दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि 21 सेप्टेम्बर खां कोटिया जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कयो वियो। ज़ियारत ऐं भरपासे में दहशतगर्दनि जे थाकनि खे तबाह कयो वियो। रुगो ऑपरेशन शोबान में हेल ताईं 33 भारती दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। 25 सेप्टेम्बर ते नौशकीअ में ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्द मारिजी विया।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में BEd 1.5 साल ऐं BEd 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ BEd डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल, खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्ने के लिए मिल्क राइज एक्ने क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्ने क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार, मेहरापुर। 03000-310-5109, 03000-310-5109।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग, कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा

0: एडमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। राबते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोज मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।

0: आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चोणियो
0: मां भी वही चवा उन ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
5: उम्मीद के दिए जलते हैं
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गाम

0: कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03011 96 851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

सिंध पुलिस धाड़ेल नाडो बेवस बणियल गुजरियल डी का अगवा थियल केटीए न्यूज खानपुर महर जो रिपोर्टर अजीम सियाल अजा बाजियाब न थियो। आई जी सिंध ए घरू वजीर सिर्फ नोटिस वी वही रहा। सिंध हुकूमत भुंग बाबत मुगी साफी के वारसन से राबतो न कयो। धाड़ेल गुजरियल अजीम सियाल के वारसन के फोन कर 1,00,000 रुपया भुंग घुरो। संदस वारसन जो चवण है त करोड़ भुंग किथा आणींदासीं। कलम धणन जो चवण है त कलम धणन जे अगवा जा वाक्या गणती जुगा आहिनि। सिंध हुकूमत उन जो जवाब ॾे।

केटीएन न्यूज खानपुर महर जे रिपोर्ट रजीम सियाल जे बाजियाबी लाए कलम धणी सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहरन में मुजाहिरा ऐं धरणा चक बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाज कयो वियो। कलम धणी जो चवणु आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते सहाफ़ियुनि खे सज़ा ॾिनी पई वञे। अज़ीम सियाल खे फौरी तौर ते बाज़ियाब करायो वञे। IMF वफ़द अॼु नाणे वारे वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो। आयुषन सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं कंदो। ज़ाहिर त IMF जो मिशन स्टेट बैंक जे ज़रियनि मां मुतमैन आहे। IMF खे सऊदी अरब जे डिपॉज़िट बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे।

0: अमेरिका जंग खटी चुको आए पर खत्म न थियो आइन। अमेरिकी सदर फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू डींदे चयो त मिट्रम चुनन का अगु ईरान ते हमलो करे सगा तो। ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थियण जी उम्मीद आहे। असां जो बुनियादी मकसद ईरान के जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकण आहे। ईरान खिलाफ फौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रही आहियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।

0: ॾेढ साल ऐं बी एड अढाई साल जूं दाख़िलाऊं शुरू थी वियूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाबु उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न विञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बी एड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
1: असली चीजान चारो मसालो जी सुन्याणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जी जान चारो मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारो मसालो, ढोरे सेहतमंद। जी जान चारो मसालो, जी जान चारो मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर के शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद को खत्म करने पूस और बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम जल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज। राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहराबपुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
2: अली अली।

मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

$1,20,000,000 जी किस्त लाइ IMF ऐं पाकिस्तान विच में ॻाल्हियूं थींदियूं। अॼु IMF मछी नाणे वारी वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो। IMF मिशन जूं चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं। ज़रियनि जो चवणु आहे त टैक्स नेट वधाइण ते ॻाल्हियूं थींदियूं। IMF जो मिशन स्टेट बैंक जे ज़रियनि मां मुतमैन आहे। IMF खे सऊदी अरब जे डिपॉज़िट बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। सिंध पुलिस धाड़ेल नाडो बेवस बणियल गुज़िरियल ॾींहं खां अॻुवा थियल KTN न्यूज़ खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अञा बाज़ियाबु न थियो। IG सिंध ऐं घरू वज़ीर सिर्फ़ नोटिस वठी वेही रहिया। हुकूमत भुंग बाबति बि मुगवी सहाफ़ीअ जे वारसनि सां राब्तो न कयो। धाड़ेलनि गुज़िरियल ॾींहुं अज़ीम सियाल जे वारसनि खे फ़ोन करे 1 करोड़ भुंग घुरियो। संदसि वारसनि जो चवणु आहे त 1 करोड़ भुंग किथां आणींदासीं। कलम धणनि जो चवणु आहे त कलम धणनि जे अॻुवा जा वाकिया ॻणितीअ जोॻा आहिनि। सिंध हुकूमत हुन जो जवाबु ॾे। KTN न्यूज़ खानपुर महर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा चक बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। कलम धणी जो चवणु आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते सहाफ़ियुनि खे सज़ा ॾिनी पई वञे। अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब करायो वञे। अमरीका जंग खटी चुको आहे पर कारवाइयूं मुकमल तौर ख़तम न थियूं आहिनि। अमरीकी सदर फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त मिट्रम चूंडनि खां अॻु ईरान ते हमिलो करे सघां थो। ईरान ख़िलाफ़ जंग जल्द ख़तम थियण जी उमेद आहे। असांजो बुनियादी मक़सदु ईरान खे जोहरी हथियार ठाहिण खां रोकणु आहे। ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी ऐं मुआशी सतह ते कामयाबियूं मिली रहियूं आहिनि। ईरान अमरीका सां ॿीहर जंग करण लाइ बि तयारु आहे। सफारतकारी ॾांहुं वापसि अचण लाइ को बि जवाज़ न आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराची चयो आहे त तहरान जंग जो ख़ात्मो चाहे थो। आबिना अरम्स खोलण लाइ बि तयारु आहियूं। अमरीका जंग ख़तमु करे असांजा मंझंदि असासा बहाल करे ऐं पेट्रोल विकिरो करण तां पाबंदियूं हटाई वञनि। बलोचिस्तान में मज़दूरी लाइ वियल मुरीद शाख वासी 8 पोरियत अॻुवा थियल पोरियत जो तालुक मुरीद शाख जे ॻोठ मिठल ॾहर सां आहे। वारसनि मूजिबि पोरियत बचनि जो पेट पालण लाइ बलोचिस्तान में मज़दूरी करण विया हुआ। मज़दूरनि खे बाज़ियाबु कराए वञे। अॻुवा थियलनि में सिकंदर नौमान शमन नईम समीउ ख़ान आफ़्ताब बासित ऐं शाद अहमद ॾहर शामिल आहिनि।

0: मीर रज़ा केस में वॾे वज़ीर अदालती कमीशन जे मुदे में वाद वारी समरी मंज़ूर करे वरिती। ज़रियनि मूजिबि वॾे वज़ीर समरी मंज़ूर करे वरिती आहे, पर सिंध काबीना खां बि मंज़ूरी वरिती वेंदी। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जो मुदो गुज़िरियल ॾींहुं पूरो थी वियो। मीरपुर माथल में पुलिस हिरासत मां जवाबदार फरार थियण ते टे पुलिस अहलकार गिरफ़्तार। पुलिस अहलकार इम्तियाज़ कलवर, एजाज़ गडाणी ऐं अल्ताफ़ शाह खे गिरफ़्तार कयो वियो। SSP घोटकी अनवर खेतरान टिनी पुलिस अहलकारनि खे क्वार्टर घाट कयो। पुलिस मुक़ाबले केस में गिरफ़्तार फारूक बोज़दार पुलिस मोबाइल मां फरार थी वियो। मेयाड़ में नौजवान जे कातिलनि जे गिरफ़्तारी लाइ पार वारसनि जो पाक किताब खणी प्यादल मार्च। मक़तूल सजा चांडे जे वारसनि 3 किलोमीटर प्यादल मार्च करे प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो। वारसनि जो चवणु आहे त पुलिस क़तल केस दाख़िल कराइण बावजूदु जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न आहे करे सघी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस, गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आईं जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो इरशाद ऑटोस आईं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आईं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आईं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: हर नज़र आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000315109 03005109
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूमर।

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: सोनी अॼु त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे
2: हा साईं ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे
1: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे
2: चाचे जुम्मनि जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे
1: छा छा
2: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो ढोर सिहतमंद थियनि था गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो
1: वाह सोनी वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो
2: साईं रेडीअ ते था ॿुधाइनि ॿुध अची वठी अच
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं
2: हा साईं हा
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
4: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
7: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
7: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
8: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 0242-460100
9: आ अंगन ई तू कयो गद्दी की तू ज السلام علیکم ادا.
10: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
9: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے؟
10: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
9: نہ ادا.
7: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
9: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
10: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
9: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
10: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
11: 0301-399-2836.
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

पाकिस्तान विच में गालियों अज थींदियूं अज IMF मिशन नाणे वारी वजारत सां गालियों कंदो IMF मिशन जूं चैनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे अख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं ज़रियनि जो चवणु आहे त टैक्स नेट वधाइण ऐं सूबनि खां टैक्स ऐं नॉन टैक्स रेवेन्यू जी उगाड़ीअ ते ॻाल्हियूं थींदियूं IMF खे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऐं दहशतगर्दीअ जी फंडिंग में रोकण बाबति आगाह कयो वेंदो

0: शिंगाई तावन तंजीम के नेशनल कोऑर्डिनेटर जो बिंडियन वारो इजलास अज का इस्लामाबाद में शुरू थींदो। एससीओ जे ईंदड़ इजलासन ऐं सरगर्मियुनि जे तयारियुनि ते गौर कयो वेंदो। पाकिस्तान खे ईंदड़ साल एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट सरबराह इजलास जी मेज़बानी करणी पवंदी। सिंध पुलिस धाड़ेल नाडो बेवस बणियल गुजरियल ॾींहं खां अगवा थियल केटीए न्यूज खानपुर मार जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अञा ताईं बाज़ियाब न थियो। आईजी सिंध ऐं घरू वज़ीर सिर्फ़ नोटिस वठी वेही रहिया। हुकूमत भुंग बाबति वे मगवी साहिबी जे वारसनि सां राब्तो न कयो। धाड़ेलनि गुज़िरियल अज़ीम सियाल जे वारसनि खे फोन करे 1 करोड़ भुंग घुरियो। संदसि वारसनि जो चवणु आहे त करोड़ भुंग किथां आणींदासीं। कलम धणनि जो चवणु आहे त कलम धणनि जे अॻुवा जा वाकिया ॻणितीअ जोॻा आहिनि। सिंध हुकूमत हुन जो जवाबु ॾे। केटीए न्यूज़ खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, नौशरो, फिरोज़, उबावड़ो, मीरपुर माथेलो, ठरी मीरवा, चक बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाज कया विया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी। पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे, झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000-3105-109, 03000-3105-109।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
2: खुश खबर। फ्री लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836।
7: मंझन जो 2 बजे का
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।
9: Thank you.

तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनको मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम के समंदर चाहते की बारिश और लाजवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे चकते समय से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तारदगम से खुशी तक दिन से जिंदगी के पहले दिन जिंदगी के आखिरी दिन अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डेज कैन ब्यूटी शो। बिल्कुल सुनाब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके जनाब कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए क्यों और कैसे जरूरी है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो इस्तेमाल होगा ना आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि भाई जान ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है ये भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा वाली मजीद बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ प्रोग्राम के अंदर शेयर की जाती हैं। प्रोग्राम में आप लोगों के लिए फन होगा, एंटरटेनमेंट होगी, आप लोगों के साथ गाने होंगे जनाब मजे मजे के और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ की जाएंगी बातें जो कि आप लोगों के लिए होने वाले हैं, आप लोगों के साथ ही होने वाले हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं तो वो इसलिए बताते हैं क्योंकि भाई बहुत सारे अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करके देखे होंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छा और एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं तो उसकी क्या क्वालिटीज हैं और क्या आप इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से अपनी खूबसूरती में इजाफा लाने वाले हैं ये आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है वाकई जो बताना चाहिए भाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अगर आप भी अपनी स्किन से लेकर थोड़ा सा परेशान है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के चेहरे पर आ चुकी है तो उन तमाम चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए और अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ाने के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो होगा वो क्यों जरूरी है ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा मजेदार रहने वाला है और आपका हमारा साथ होगा जनाब पूरी पूरी 3 बजे तक। तो पूरी 3 बजे तक मैं आपको लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ, उसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम तो सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत हो समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डीजे सदरा मुस्कान नाम तो सुना होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। चलिए जी रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में फन करने के लिए, प्रोग्राम में बातें करने के लिए और प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए। और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद एंड शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे 2 घंटों का। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए आने के फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करते हैं जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारा सा कलाम यहाँ पर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो जनाब बताते हैं कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है। ओके सो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: ਜਨ ਕੇ ਦਵਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਵਠਣੀ ਪੌਂਦੀ ਮਾਹਰੇ ਅਮਰਾਜ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲੋ ਪੁਰਾਣੋ ਨਜ਼ਲੋ ਨਿਛੋ ਮਥੇ ਜੋ ਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੰਨ ਜੋ ਵਹਣ ਕੰਨ ਜੋ ਸੂਰ ਘੱਟ ਬੁਧਣ ਮੇ ਅਚਣ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਜਾ ਮਰਜ਼ ਫਾਲਜ ਖੰਘ ਟੀਬੀ ਮਾਦੇ ਜੀ ਅਲਸਰ ਮਾਦੇ ਜੀ ਜਲਨ ਦਿਲੀ ਜੋ ਵਧਣ ਜਿਗਰ ਜਾ ਮਰਜ਼ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ ਸੀ ਗੁਰਦੇ ਜੀ ਪਥਰੀ ਮਸਾਨੇ ਜੀ ਪਥਰੀ ਜੋ ਬਗੈਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਕਯੋ ਵਣੇ ਥੋ ਗੁਰਦਨ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਰੰਗ ਸਾਂਵਰੋ ਚਿਹਰੇ ਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਫਟ ਫੁਰੜਿਓ ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: नूरे जा पीउ रेडियो ते चारे मसाले जो ॿुधाइनि पिया भला इहो त ॿुध ऐं वठी अचु
2: जीजा ढोर चारो मसालो हाज़मेदार वधाए खीर ऐं गोश्त जी पैदावार 50 सालनि खां आज़मायल सखर वारनि जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ऐं जानवरनि जे डॉक्टरनि खां नालो वठी तलब कंदा
3: हा भाग भरी चङो थो लॻे मां हाणे ई थो वठी अचां
4: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
6: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
7: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते

जी सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम रेडियो नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरेन मैरापुर माथली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल जी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी. अच्छा बहुत ज्यादा जरूरी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाकई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. जैसे कि हम अगर देख लें हमारी बॉडी के लिए खाने पीने की कुछ चीजें वाकई बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं तो वैसे हमारी स्किन के लिए भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें या फिर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप क्यों करेंगे. ओके जी लेकिन उससे पहले क्या करना है आप लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करना है और दोस्तों के साथ जरा हमारी पोस्ट को शेयर कर दिया करें ताकि वो आपके जो दोस्त है ना वो भी जान सके और पहचान सके डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में. और इसी के साथ साथ आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ ही साथ डायल करते रहिए वो नंबर जो कि आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर बताए जाएंगे जिनके ऊपर रब्ता करके आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराएंगे. ओके हो गया. और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था. इस सवाल का जवाब दीजिए 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाइए. अच्छा तो यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों के साथ बात करें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जनाब एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हुआ है जनाब जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो इतने ढेर सारे प्रोडक्ट लगा लिए हैं ना उनमें ये एक अनोखा प्रोडक्ट अनोखा इस तरह क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ये मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार हुआ है और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जो है ना उन डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले ईजाद करते हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो केमिकल से पाक होना चाहिए उसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल एड नहीं हो और वो ऑल स्किन टाइप के लिए हो तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो तो उसके ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सके तो ये आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि जनाब एक मेडिकेटेड फार्मूला है और साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2 रातों के इस्तेमाल से अच्छी खासी रिजल्ट्स देने वाला प्रोडक्ट है. तो अगर आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे जो कि आपको क्विक रिजल्ट दे सके अगर आपके घरों में शादियां हो रही या फिर आपकी अपनी शादी हो रही है और आपको चाहिए ऐसा प्रोडक्ट जो कि बस आप लगाएं और आप चुटकियों में खूबसूरत हो जाएं तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है अल्फा आरबुटीन है कोजिक एसिड है ग्लूटाथायोन है ये तमाम चीजें एड की गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ एक नाइट क्रीम है बल्कि ये 2-in-1 फार्मूला है. 2-in-1 फार्मूले से मुराद ये कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स की एडिशन की गई है ना ये इसलिए है जनाब क्योंकि ये जो 2 चीजें हैं ना ये महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर एड की जाती हैं और पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे ना ये जो इतने करोड़ों तादाद में हमें प्रोडक्ट नजर आते हैं तो उन तमाम प्रोडक्ट्स में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स की जो ना वो एडिशन की गई है. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी कोई अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए कोई सेफ प्रोडक्ट होना चाहिए कोई जनाब प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए वो भी मुनासिब सी कीमतों में आपको मिले तो ये आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यही खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके अंदर विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स जो हैं या आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे पर जो है ना वो फेशियल जैसा निखार लाते हैं आपके चेहरे की स्किन ग्लो करती है आपके चेहरे पर जो है ना ये रिंकल्स का खात्मा हो जाता है आपके चेहरे पर जो ये डार्क सर्कल्स आ जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि आपको परेशान कर चुके हैं तो वो ऐसे झट से गायब हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे और आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती गुलाबों की तरह आप निखार करते और आप महकते रहेंगे और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से होने वाला है. अगर आप भी 2 रातें डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और ये कमाल जनाब उनसे पूछिए जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से कीजिए और इसी के साथ साथ
डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ जो है ना आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप ट्राई कर सकते हैं। जो लोग भाई क्रीमों से थोड़ा अवॉइड करते हैं कि हम क्रीमें नहीं लगा पाते हैं, तो आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है, आप बस जाकर परचेज कर सकते हैं और अपनी खूबसूरती को जरा एक नया सा एहसास दे सकते हैं। नई नई चीजें ट्राई करना अच्छी बात होती है, लेकिन चीजें वो ट्राई किया करें जो आपकी स्किन के मुताबिक हो और जो मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार की गई हो। तो क्या ही कमाल के प्रोडक्ट आपके लिए लेकर हाजिर खिदमत है जनाब, ट्राई करके देखिएगा। अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 0233-274309। ये नंबर आहे 0312-50-25097। डायल करे पांची करीबी जनरल स्टोर्स ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सघो था। सो अवेलेबल करायो बाबा ऐं पांजी स्किन जो ख्याल रखो। तव्हां ख्याल न रखंदा त बाक़ी केरु रखंदो? तव्हांजी खूबसूरती हाणे तव्हांजी हथनि में आहे। ॾिसूं त कॾहिं त तव्हां खूबसूरत थियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो। बिल्कुल जी, इस्तेमाल करती रहिए और मुझे जरूर बताया करें जैसे आप बता रहे हैं कमेंट्स में कि भाई आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, और आप मैसेजेस में भी बता रहे हैं कि आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूर अपना फीडबैक दिया करें ताकि सुनने वाली समातों को पता चले कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके कॉमेंट्स ऊपर न चले जाए इसलिए मैं जल्दी से आपके कॉमेंट्स की जाने पर जाती हूँ। नजीर भाई लिखते हैं कि जिंदगी का असल मकसद कायनात का असल शऊर हासिल करके बेसहारा इंसानों की जिंदगी में हौसला पैदा करना और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है। बिल्कुल आपने सही कहा। और निदड़ी हमारे साथ मौजूद है, निदड़ी हमारी फिदड़ी कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी, वेलकम टू शो, तबियत कैसी है शोना मोना? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और चाचा खालिद कहती है बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम, कल सुना कि आप नहीं नहीं इतना जल्द में शिकारपुर अगर जाऊंगी तो 4-5 दिन तो रहूंगी ना, वो कल थोड़ा सा ऐसे बस था कि कुछ प्रॉब्लम।

मेरी शोना मोना और किशोर भाई कहते हैं कि सलाम अदा स्मार्ट आयो आ तुम भी आयो आही या भूत आमा बिल्कुल सरासर आयो आया तां ॾिसी सघो था तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो कोन मूंखे लाज़मी ॿुधाए वठिजो और फही भाउ तव्हां टॉपिक जो जवाबु ॾिनो आहे ठीकु हो गया दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून माई स्वीट ब्यूटीफुल आर जे चंदा जानी आप कैसी हैं मैं बहुत खूबसूरत आप बताएं आप कैसी हैं कहती की दुआएं आपके लिए हैं मेरी दुआ है की अल्लाह पाक आपको वो सब दे जो आप दुनिया और आखिरत में चाहते हैं मेरी दुआ है की अल्लाह पाक आपको मुस्कुराने की इतनी वजूहत दे की आप पिछली तकलीफें भूल जाए आमीन और कहती की मेरी दुआ है की अगले आंसू आपकी आंखों से खुशी के आंसू आए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसा मुस्तकबिल दे कि आप माजी के सारे गम भूल जाए अल्लाह पाक आपके लिए हर काम में आसानी पैदा करे आमीन आमीन सुमा आमीन सारे लोग आमीन बोलिए भाई देखे कितनी प्यारी दुआ दी है मैंने निदड़ी ने और दूसरी निदड़ी ने दो निदा है ये दर्दे दिल का नाम भी निदा है और चाचा कहते हैं कि बहुत कुछ सोच रखा है बेटा से जो हमने डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो वो तमाम चीजें मेरे साथ शेयर कीजिए आपने क्या क्या सोचा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अख्तियार अली गब्बर भाई हमारे साथ हैं और आप हमें सुन रहे हैं जी विलेज मोहम्मद उस्मान से भाई को वेलकम इन खुश आमदीद कहते हैं और किशोर भाई कहते हैं कि तू जो आजकल के बार बार के टॉपिक खबर आ है अच्छा यानी कि तव्हांखे जवाब अचे थो हाँ पर निदड़ी के नथो अचे यानी कि निदड़ी बार बार खां भी चटो सो आप मुझे बताइए टॉपिक का जवाब क्या हो सकता है और इसके साथ साथ मोहम्मद जमान भाई कहते हैं टॉपिक जो जवाब देना हुआ है ओके और मीर मोहम्मद बरोही भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ जी आप बताएं कैसे हैं और जैन अली आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है ओके हो गया जी महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है गुड आफ्टरनून मैम आर जे वेलकम सर किशोर भाई कहते हैं आज टॉपिक पे अच्छा कहती है जो टॉपिक ही रख चलो ठीक है ये टॉपिक रखूं था बाबा टॉपिक चेंज कयो वने तो पर बे जेको कलाक वेंदासी ना त उन में ता वरी ना टॉपिक जो जवाब दे जो त एक इंसान के कहीं चीज जो गुरूर हुंदो आहे हुस्न जो पैसे जो या बियो कुछ वरी छातो थी सके हुस्न ही पैसो ना जेते इंसान मस्ती कंदो आहे सो तामो के बुधा एक इंसान के गुरूर आखिर कहीं चीज जो थी सके तो हुस्न जो या वरी पैसे जो बियो वरी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो भी थी सके तो सम सेज आई एम स्वीटी

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए आप मुझे कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। जी स्किन क्रीम लगा रहे नहीं भाई, वो मुझे मुजरम लगते हैं जो डे स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाते। अरे मुजरमों को सजा दो, डे स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों नहीं लगा रहे।

अरे भाई ये हुसन आपको मिला है, ये मेहरबानियां है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और मुझे बताइए आप भी लगा रहे हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद ला देगा जनाब। आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि लोग आपसे मुड़ मुड़ कर पूछेंगे कि भाई बताएं तो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताइए ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का।

ਜੋ ਕੁਝ ਕੋ ਛੂਏਗਾ ਵੋ ਜਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗਾਲ ਤਾਂ ਵਸੇ ਦੀ।

Angie. गाने इतने अच्छे लगाती हूँ कि मैं तो गाने में मस्त हो जाती हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स कौन पड़ेगा, तो मैं ही पढ़ूंगी। वापस आ जाते हैं जी, और हमारे साथ यहाँ पर सुनील कुमार महाराज कहते हैं डी स्किन क्रीम अवेलेबल, सुनील कुमार जनरल स्टोर कंडियारी। ओके जी, जितने भी लोग हमें कंडियारी वाले सुन रहे हैं वो सुनील भाई के जनरल स्टोर से जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं, तो जाइए और परचेज कीजिए। महर इरफान सियाल साहब कहते हैं गुड शो मैम, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, मीर मोहम्मद बिरोही भाई, थैंक यू आप हमारे साथ ही। अब्दुल रजाक कुंभर भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद कुंभर भाई कहते हैं बहन सिद्रा कैसी हो, बिल्कुल चाक को हाथ सफा चाक को सलेट, और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मोहम्मद खान में इस्तेमाल कर रहा हूँ या मोहम्मद खान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा चले ठीक है, सब इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिल रही है तो जो नंबर आपको बता रही हूँ ना उसके ऊपर रابطہ जरूर कीजिएगा। रابطہ करने से ये होगा फायदा कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि भाई हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर से इजीली जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं। अच्छा फरवा हमारे साथ, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी। फहीम भाई कहते कहता लाड़काना में पाकिस्तान चौक ते फारवन जो जूस एंड फारवा मिलन था, फरवा के बुधायो हेडे होडे न मने फारवा वठण। अच्छा सही आ बुधो नो फरवा। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं डी स्किन वाह वाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम चो बाबा सजो नालो वो एहतराम डी स्किन ब्यूटी क्रीम पूरो नालो वठना तरी तव्हांखे दुकानदार बि ॾींदो, अगरि तव्हां अधु नालो वठंदा दुकानदार कंफ्यूज थींदो, पोइ तव्हांखे कोई बि प्रोडक्ट ॾेई छॾींदो। तव्हां पूरो नालो वठो, तव्हांखे ख़बर हुजे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे मथां जेको आहे न डॉक्टर माई जो फोटू आहे। इस्तेमाल करती रहिए। और अख्तियार अली गब्बर भाई बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद यूसुफ पंवर भाई हैं गोट अच्छा मीरपुर, बेहतरीन प्रोग्राम सलामत रहो, थैंक यू प्यारा भा, तव्हांजो गोठ मूंखे समझ में न आयो सो मोहब्बत आहिनि सोने भाजू प्रोग्राम ॿुधो पिया। और फरवा थैंक यू सो मच, तव्हां मुमताज मलई जो गानो ॿुधो था, ॿुधण चाहियो था, मां कोशिशि कयां थी हलाईंदसि गानो। और हुन खां अलावा चाचा ख़ालिद कहते हैं असां ग़रीबनि जा कॉमेंट मथे हलिया विया, अदा साईं कोन विया न अदा साईं, तव्हां सबर कंदा कयो थोरो अदा साईं।

जनाब और यहाँ पर आप टॉपिक फॉलो कीजिए. टॉपिक जरा चेंज हो चुका है. आप मुझे बताएंगे एक इंसान किस चीज को लेकर गुरूर करता है, पैसे को लेकर या फिर हुस्न को लेकर? क्योंकि हाँ, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिस से इंसान गुरूर कर सकता है. मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने हुस्न पर बड़ा गुरूर करते हैं. तो हुस्न पर गुरूर करना ये अच्छी बात होती है या नहीं, ये तो वैसे हम बताएंगे आप लोगों को. लेकिन आप मुझे बताइए कि एक इंसान आखिर किस चीज के ऊपर ज्यादा गुरूर करता है, पैसे पर या फिर खूबसूरती पर? अच्छा, फहीम भाई कहते हैं कि पूछते हो ना तुम क्या पसंद है मुझे, देखो मेरी पहली लाइन का आखिरी लफ्ज. ओके वासु भाई हेलो. रशीद खोसू भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. वासु भाई कहते मुझे प्यारी भेण केड़ा हाल है तमा जा प्यारा भा मैं ठीक है तहां की आयो. नजर मोहम्मद भट्टी भाई कहते कि टॉपिक नहीं आता क्योंकि मैं तब नहीं था ना, इसीलिए. ये भी बात है. अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं मेलसी से, खुश आमदीद प्यारे भाई. डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करी नहीं भाई, कुछ लोगों का तो तुक्का भी काम आ जाता है. वसीम भाई हमें सुन रहे, टॉपिक का जवाब दिया है बढ़िया. कहते आपका शो वीआईपी है, थैंक यू. हजार भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई. और मुजाहिद मलिक हमें सुन रहे, कहते सिडो अच्छी वयासी महफिल में वेलकम त कंदी कर पक्की, वेलकम बाबा वेलकम तांके भली करी आया, खुशामदीद स्वागतम. पक्की कोनिया पक्की कोनिया. अच्छा चाचा कहते बेटा सिडो और सुनाए क्या हाल चल है. अब कराची में गर्मी कम है तो अब डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करेंगे और सोना मोना हो जाएंगे. बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं. डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के लिए आपको सर्दियों का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप हर सीजन में लगा सकते हैं. मेडिकेटेड फार्मूला है तो लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए. मलिक नजर हुसैन भाई हमें सुन रहे हैं, लाजवाब प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया. निदड़ी कहती है कि निदड़ी मैं हूँ बस, हाँ हाँ तू बस थदो दे थदो फकीर. दर्दे दिल कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत हो. आईली मेरे को लगा ला छाती चले. अच्छा दर्द दिल कहती है कि आए हाय आज आते ही इंजॉय करवा दिया, डांस करने को दिल कर रहा है आज, डीजे फुल आजादी में. हाँ बाबा मुखे लगे तो आज मैं आजाद आया. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब आप सारे लोग गानों की फरमाइशी कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये भाई क्या मैं करूं अब, किस किस के गाने लगाऊं. तो जब मुझे लगता है कि भाई आज नहीं होगा गाने प्ले, तो मेरे को लगता है भाई आजादी हाय एंजॉय करो अपनी आजादी. तो अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगी. आप जरा मौजूद रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा. अगर आप इस्तेमाल करें तो मुझे बताइए आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं. और टॉपिक को फॉलो कीजिए और साथ साथ मौजूद रहिए क्योंकि यहाँ पर टाइम हुआ है न्यूज ब्रेक का. उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ मौजूद रहिए और सुनते रहिए और साथ दीजिए. मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. So stay tuned, stay connected and keep listening. White Asian D Skin Beauty Show is sponsored by D Skin Beauty Products. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: बहादुर और बहुत अहलियत रखने वाले वजीर आला हैं। आप नेशनल एक्शन प्लान पे उनकी मीटिंग्स देखें। मैं आपको कहता हूं, आपने सवाल किया ना, काश आप रिसर्च करके आते तो आप ये सवाल करते ही ना मेरे से। आप कंपैरिजन कर लें कि पिछले एक साल में सुहेल अफरीदी की नेशनल एक्शन प्लान पे कितनी मीटिंग है और सरफराज बुगटी की कितनी मीटिंग है। दूसरा, सरफराज बुगटी ने दहशत गर्दी की तदारक के लिए कितनी इक्विपमेंट अपनी पुलिस को लेकर दी है, कितनी ट्रेनिंग्स करवाई है, कितना अपग्रेड किया अपनी पुलिस को और सुहेल अफरीदी ने कितना किया। तीसरा, वफाक से उन्होंने अफसर मांगे, उन्होंने कहा अच्छे अफसर दें, पुलिस अफसर दें। उधर तो भाई मेरे डिप्टी कमिश्नर शहीद हुए हैं, आप क्या बात करते हैं। डिप्टी कमिश्नर सामने खड़े होकर शहीद हुए हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरा इक्विप किया है, ना सिर्फ अपने सिविल अफसरान को, पुलिस के अफसरान को। तो जमीन आसमान का, हक और बातिल का, सच और झूठ का फर्क है वजीर आला सरफराज बुगटी और सुहेल अफरीदी के दरमियान। और मैं समझता हूं कि सरफराज बुगटी को सलाम पेश करना चाहिए जो बहादुरी, अहलियत और तमाम तरह अपने वसाइल बरूए कार ला रहा है दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क रहेगा, ये फर्क मिट नहीं सकता।
4: सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो दहशत गर्दी के वाकया देखने में आ रहा है, चंद सालों में बेशतर में अफगानी नेशनल्स जो है नेशनल मारे जाते हैं और पाकिस्तान प्रूफ भी देता है, उनकी डेड बॉडीज भी अफगानिस्तान वापस लेता है, इनकार भी करता है, बाद में ले भी लेता है, ये बड़ा वादे है। सर, एक 2018-21 की दुनिया जो पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी सर, जिसके तहत वापस बुलाए गए थे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हार्वर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला ऐं बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे, त ही बहितरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लाॻापियल केतिरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
5: मालवन भारन लाए खुश खबरी, 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो, जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए, अवहां के खुशहाल बनाए, हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे।
6: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
7: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा जगह जो जारू जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ खसूसी रियायत होंगी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4656 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
9: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
10: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
11: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन
10: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
11: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
12: अस्सलाम वालेकुम अदा
13: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
12: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
13: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
12: न अदा
10: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
12: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
13: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
12: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
10: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
13: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
14: 0301-399-2836।
15: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप जरा मुझे बताइए। और इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं, तो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊंगी आप लोगों के प्रोग्राम का जो दूसरा घंटा यानी कि स्टार्ट होगा ना, प्रोग्राम का दूसरा घंटा का जो ये पहला लिंक होगा, तो इसमें आप लोगों की हम 10 से 15 मिनट जो है ना वो रेगुलर कॉल्स भी जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर ऐड करेंगे। भाई कॉल्स भी होनी चाहिए प्रोग्राम में, ये चीज तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा है कि आप लोगों की कॉल जो है ना वो लेना मैं स्टार्ट करूंगी अभी, और एक मेरे पास गाना भी उसकी फरमाइश है, तो मैं जरा सोच रही हूँ कि पहले हम ऐसा करते एक गाना सुन लेते हैं। गाना सुनने के बाद हम जो है ना रेगुलर बस आप लोगों की कॉल्स ही पिक करेंगे। और इसी के साथ साथ आप जो पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, और ये जो प्यारा गाना मैंने लिस्ट में लगाया है ना ये हम डेडिकेट किसको कर रहे हैं बताते हैं, थोड़ा गाना सुन लीजिए।

कि ये जो प्यारा गाना मैंने लिस्ट में लगाया है, ये गाना किसको डेडिकेट जाने वाला है? ये जी गाना डेडिकेट जाएगा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी फरहान गोलो, वो हमें सुन रहे हैं और हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं। फरहान भाई आपको वेलकम कहते हैं और आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये गाना आपको डेडिकेट जाता है। इंजॉय कीजिए और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

और बिल्कुल आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ढूंढ सकते हैं। फरहान भाई जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो बिल्कुल आपको कह रहे हैं भाई आप भी ढूंढिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं हुई तो आप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर आप रब्ता करके इजिली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर मिल रही है, डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा तो आप फेस वॉश को भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए और खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए, क्योंकि आप भी डिजर्व करते हैं खूबसूरत होना। अच्छा, यहाँ पर सवाल बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं कि एक इंसान को किस चीज पर ज्यादा गुरूर होता है, अपनी खूबसूरती पर या फिर पैसे पर। अच्छा, कॉल्स लेना मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों की। कॉलिंग नंबर है जनाब 0333221322 एंड 88।

अच्छा नियाज मोहम्मद भट्टी भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप मटियारी से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको, वेलकम कहते हैं। हनीफ अल बलोची लिखते हैं कि लिखता हूँ तो तुम ही उतरते हो कलम से, पढ़ता हूँ तो लहजा भी तुम, आवाज भी तुम। हजार भाई कहते हैं कि सिस्टर आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप प्रोग्राम एंजॉय कीजिए। तालिब मरी समारू भाई हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। किशोर भाई कहते हैं टॉपिक इंसान के पैसे जो गुरूर ज्यादा हूँ आहे, चवंदा आहिनि न हिन के पैसे जी मगी आहे, हाओ मां ॿुधो आहे पैसे जी मस्ती हूंदी आहे। और सही था चो, वैसे सही था चो। और हमारे साथ स्मार्टू गोपांग, वालेकुम अस्सलाम। निदड़ी कहती है कि भाई लड़कियों को हुसन पर गुरूर होता है और लड़कों को जो है वो पैसों पर गुरूर होता है। अब इस बात में पता नहीं कितनी सच्चाई है, वो तो आप ही बताएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे ही नहीं, ये भी आप ही बताइए।

अच्छा वफा अब्दुल वहीद जतोई भाई, आपको भी वेलकम के थे स्टिकर्स सामने कर दिए जी, बहुत शुक्रिया। इस वजह से लोगों के कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, तो स्टिकर्स थोड़ी अवॉइड किया करें, सलाम दुआ लिखा करें, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया करें या फिर पूछा करें। और किशोर सुमाटू गोपांग, आपने जो है ना वो लिंक शेयर कर दी है, तो आज लिंक में जरा एरर आ रहा है, तो ये मुझसे प्ले नहीं हो सकती है, तो किसी के भी आज गाने नहीं प्ले होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। और शाजिया अली कहती है हानी हाने क्या कह रही हैं। एहसन अली बुक्टी भाई, आपको भी वेलकम हो गया, प्रोग्राम में मौजूद है। निजाम भट्टी कादरी भाई हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम। और भाई मटियारी खां से सगर मौजूद है, मटियारी में भा तहां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिले पई हर के था, सो तहां वठी सगो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था।

अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर किया है नहीं ये मुझे जरा बताया करें, और पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि शेयरिंग जो होती है ना उससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों को हम बता पाते हैं कि भाई आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती पे ये जो प्रॉब्लम्स आ चुके हैं ना आपके उनको हटा सकते हैं, खूबसूरती को हमेशा महफूज रख सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर आ जाती है जी चमक ग्लो, और आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई वाकई अब हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं दिल खोलकर, क्योंकि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूले जो होते हैं उसे हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर कॉम्बिनेशन टाइप ही क्यों ना हो। तो मर्द हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सब लोग कर सकते हैं।

हजार भाई ये गाना आपको डेडिकेट रहा था, आपको पसंद आते ही ना ऐसे गाने. आपको डेडिकेट. टाइम हुआ है जरा यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व जवाबित

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर आई सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 बजे ताई मरीज

0: हलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिणु मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज़ थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। तेलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद एंड बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेट हलंदी?
5: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

छोथा कुरको बाबा छोथा कुरको न कुरको दिल वडी क्यों इंडी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल क्यों बिल्कुल जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है अगर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ साथ अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको नंबर बताया जाता है प्रोग्राम के अंदर ताकि आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सके। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने के लिए आपने जो इन नंबर्स के ऊपर रابطہ जरूर से करना होगा।

जल्दी तव्हां डायल कयो 03-12-50-25-907 ॿुड़ी 312 पंजाह 25 907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 ॿुड़ी 332 73-84-309 ही ॿई नंबर्स आहिनि तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न अवेलेबल कराए सघो था ऐं अवेलेबल कराईंदा त इहा आसानी थी वेंदी बाबा तव्हांखे काॾे शहर न वञिणो पवंदो ऐं तव्हां इहो न सोचींदा त हाणे असां किथां वञी करे जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघूं था बाबा तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ॻाल्हि ई ख़तम थी वेंदी बसि उतां तव्हां वञी ईज़ीली वठी सघो था जो आप मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये खास बात है जनाब की डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इस्तेमाल करने के बाद आपको इतने प्यारे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे तो पहले भी लगाइए अभी लगाइए देर नहीं हुई जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करते जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज तो आप बिल्कुल ही जानते हैं जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है तो मेडिकेटेड फार्मूला जो है ना उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना बिल्कुल उन्होंने ये फार्मूला तैयार किया है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं कि भाई कोई क्या मसला सेंसिटिव स्किन के ऊपर हम लगाएंगे तो हो जाएंगे या कोई भी हम प्रोडक्ट नहीं लगा पाते क्योंकि हमारी स्किन जो है हमें मोकल नहीं देती है तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कर लीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन जो है वो साफ सुथरी हो जाएगी अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो जाएगी आपकी शख्सियत में जो है ना वो ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में आप जनाब एक इजाफा कीजिए छोटा सा इजाफा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐड कर लीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के फौरन बाद ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना विटामिन ई बीट्स हैं माइक्रो बीट्स हैं तो ये चीजें भी आप जो है ना वो याद रखा करें क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो भाई आपको मिलेगी फेशियल वाली जो है ना रिजल्ट्स अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई हम कोई फेशियल इस्तेमाल करें क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 फार्मूला है इसके अंदर जो है ना ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना इन्होंने भाई ये प्रोडक्ट जो है ना इसकी 100 गुना जो है ना वो पावर बढ़ा दी है और आपके चेहरे पर अब इतना अच्छा रिजल्ट आएगा निखार आएगा कि जब आप करेंगे सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको मिलेगा परफेक्ट सा निखार तो ये कमाल होगा जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का और डी स्किन का फेस वॉश अगर हम यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हो चुका है क्योंकि कई मरतबा कुछ लोग जाते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि भाई हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है ये फेस वॉश नहीं मिल रहा है तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने के लिए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए बाकी तो अवेलेबल होता जा रहा है तो फेस वॉश जो है ना ये भी बहुत कमाल का प्रोडक्ट है ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं तो आप अवेलेबल करा सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं और डी स्किन का फेस वॉश जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है इसके अंदर हाइलोरोनिक सीरम एड किया गया है जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे की स्किन को मॉइस्चराइज करता है डीपली क्लीन करता है और आपके चेहरे की स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है तो डी स्किन का फेस वॉश लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए दोनों चीजें लगाइए और खूबसूरत होते जाइए अच्छा हम ये वाला गाना सुनेंगे और आप मुझे बताइए एक इंसान को गुरूर किस चीज पर होता है अपनी खूबसूरती पर या फिर पैसे पर।

अच्छा सुमाटो गोपांग ने यहाँ पर सवाल पूछा है कि क्या मैं भी डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकता हूँ या फिर सिर्फ खवातीन इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, डी स्किन का फेस वॉश हो या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, ये सब लोगों के लिए, यानी कि इसे खवातीन भी लगा सकती है, मर्द हजरात भी लगा सकते हैं। ऑल स्किन टाइप के लिए है। आपकी स्किन किसी भी तरह की है, कितनी ही सेंसिटिव क्यों ना, उसके ऊपर आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी स्किन का फेस वॉश जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। और साथ साथ जनाब प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट है, तो ट्राई करके देखिए, मजे आ जाएंगे। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा फजली हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी खूबसूरत, तुम बताओ कैसी हो? यदि और बताओ, ये तो नहीं बताऊंगी। और कहते सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओके।

अच्छा महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम एफएम की कुंज सिद्रा मुस्कान, खुश रहो हमेशा के लिए कुंज सिद्रा मुस्कान सॉन्ग सुनाए। अच्छा ये गाना आपको मैं कल सुनाऊंगी, ठीक है। और बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई जान, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। उनका अलावा हमारे साथ ही चाचा खाले तमाम भी मैसेज कयान पेनल ते खोड़ सारा, उनका अलावा मकसूद मला हमारे साथ कहते हेलो सिद्रा मुस्कान, मेहरापुर से आपका शो सुन रहा हूँ। आशमन का गाना सुनाना पकड़ी अचरण जी तो वो इंतजाम कया।

0: और ईशा हमारे साथ कहती हैं कि शोना आप कैसी हैं, आज मेरी माँ साथ अन्नम की बुकी है शायद आपने लिखा है और कल शादी है, दो दिन अच्छे अच्छे गाने लगाओ, हमने एको साउंड लगाया है। ओके, मैंने कोशिश करी अच्छे गाने आपको सुनाऊं। मकसूद मल्हा कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट अच्छा मिला है, जैसे चांद की पहली रोशनी ठंडी और कूल कूल। वाह वाह वाह वाह, ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए।
1: शुरुआत की तरह प्यार
0: भाई काके जो बुदो तो माई चवियां बाबा माँ के डोक है बाबा मुझे नथा लायो पहले तो यही हमारा फेवरेट बना था तो हम इसलिए ये वाला गाना भी सुनेंगे।

अच्छा एक शायरी है तो जरा हम वो भी शामली प्रोग्राम कर लेते हैं लगे हाथ. शायर सुना फरमाते हैं, सुनो जाना उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन. उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन. लोग सदियों की खताओं पर भी खुश हंसते हैं और खिलते हैं, हमको लम्हों की वफाओं ने उजाड़ा मोहसिन. जब हो गया हो यकीन कि वो पलट कर नहीं आएगा, गम और आंसुओं ने दिया दिल को सहारा मोहसिन. वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था, वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था. अब तो पल भर भी नहीं होता गुजारा मोहसिन. उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको खोना भी कैसे गवारा मोहसिन. हमने गजलों में तुम्हें ऐसे पुकारा मोहसिन, जैसे तुम हो कोई किस्मत का सितारा मोहसिन. अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे जाना, अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे मोहसिन. वो भी क्या दिन थे कि तुझको भी संवारा मोहसिन. अपने ख्वाबों को अंधेरों के हवाले करके हमने सदका तेरी आंखों का उतारा मोहसिन. हमको मालूम है अब लौट के आना तेरा, हमको मालूम है अब लौट के आना तेरा, अगर नहीं मुमकिन मगर फिर भी खुदारा मोहसिन. हमको रुखसत की घड़ी तक भी ना समझे, सांस देती रही हिजरत का इशारा मोहसिन. सांस देती रही हिजरत का इशारा मोहसिन. उसने जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैं तब तब ये बताया कि मैं तुम्हारा मोहसिन, कि मैं सिर्फ तुम्हारा मोहसिन.

क्या ऐसा हो सकता है वाकई कि इंसान जो है वो जैसे पहले था वो हमेशा वैसा ही रहता, या उसने हमेशा वैसे ही रहने की एक कसम खा ली हो? लेकिन मुझे ये लगता है कि वक्त जैसे गुजरता जाता है इंसान भी बदलते जाते हैं, तब्दील होते जाते हैं। कुछ कमियां पेशियां तो हर इंसान में होती है, लेकिन हाँ, एक इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रह पाता। आप बताएं खूबसूरती के मामले में क्या सोचा है? फेस स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे? नहीं। अरे भाई लगाइए। चाचा खालिद कहते ही अच्छा टॉपिक का जवाब दिया, ठीक है, और कहते हैं और सुनाएं क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया, आप बताएं अपने। महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ है भाईजान, बहुत शुक्रिया। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू भाई शो तमाम लाजवाब है, थैंक यू। और गोट गुलाब खान लगारी से साबिर लगारी सुल्तान लगारी रिजवान लगारी वालेकुम अस्सलाम शो नाइस है प्लीज प्ले खालिद भट्टी सुभणी। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का बुला थे वो भाई कहती तमाम जो शो लाजवाब है, थैंक यू प्यारा सोना भाई। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कौन? अच्छा नरेश, नरेश भाई हमारे साथ है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया कहते ब्यूटीफुल सॉन्ग्स चॉइस, थैंक यू प्यारे भाई। किशोर भाई कहते तुझा गाना शो के बेहतर कंदा आहिनि, एनर्जी पैदा कंदा आहिनि, डांस करण ते मजबूर कंदा आहिनि, ईअं न? आकिब जरवार हमारे साथ ही भाई जान वालेकुम अस्सलाम। निजाम भट्टी कादरी कहते मिलावट के दौर में अगर असली जहर चाहिए तो वो आपको सिर्फ लोगों के दिलों में मिलेगा। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। और हिदायतुल्ला कहते स्टूडियो चेंज

मुल्क चेंज करो। हाँ वैसे माइक भी चेंज हो सकती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया नहीं। और ये हमारे साथी जी रुखसार मरी मेरे खासी में सुन रही हैं, कहती हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच रुखसार मरी, और आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं जी मलिक जफर। मलिक जफर हमारे साथ हैं जी, कहते हैं ओके थैंक यू। अच्छा अबू हनीफ लिखते हैं कि मर्द का गुरूर सिर्फ एक वफादार औरत होती है। या तो तमा बिल्कुल सही गाल कही। अच्छा नेक महामन पालारी भाई नूरिया बासी में सुन रहे हैं, कहते हैं तमाम जो शो वी आई पी आए सलाम तमा के सबनी लिसनर्स के। सो वालेकुम अस्सलाम।

बता दो उसको। ओके जी, शफीक अली बुग्यू भाई वेलकम कहते हैं आपको। बतूल मेमन हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम। बतूल कहते हैं फ्रॉम मटियारी से। कल मैंने आपको आपका प्रोग्राम नहीं सुन पाई क्योंकि कुछ दूर से मेहमान आए हुए थे, इस वजह से प्लीज सॉन्ग चलाना। सुभाणी तमाम जो गानो बुधनासी बतूल। वसीम भाई तमाम चौथा कहते हैं, एक तेरी मुस्कान से पूरी दुनिया जो है ना वो रौनकी और रंगीन लगती है। जब तुम बात नहीं करती तो सारा जमाना वीरान सा लगता है। निदली कहती है, कुरको मुरको ये सब क्या है पूजा, ये पूजा भी नहीं जानती। अच्छा मेटा ऑफिशियल हमारे साथ कहते हैं, सॉन्ग तो चलाओ कौन सा। रमजान भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। वही भाई कहते हैं, खुदा करे मोहब्बत में ऐसा मकान आए, किसी का नाम मैं लूं और लब पे तेरा नाम आए। अदा असा समझी वयासी तमा न समझो। तां बस डेज कैन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो। और आकिब जरवार भाई आप हमें सुन रहे हैं जी, कहां से सुन रहे हैं और बताएं आपके एरिया में डेज कैन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हुई या फिर नहीं।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: करे एक करोड़ भंग करे हो संदन चवण आए त करोड़ भंग किथा आणी दासी कलम धड़न जो वधिक चवण आए त कलम धड़न जे अगवा जा वाक्य गणती जो गायन सिंध हुकूमत उन जो जवाब दे KTN न्यूज़ खानपुर महाराज रिपोर्टर अजीम सियाल जे बाज़िया बिलाए कलम धड़ी सरापा एहतजाज बणियल आहिनि मुख्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा आया पिया वञनि घोटकी नौशहरो फिरोज गंबट उबावड़ो मीरपुर माथेलो ठरी मीरवा चक बख्शापुर ऐं भान सैदाबाद में एहतजाज कयो वियो जॾहिं त जरवार खेरपुर दोदापुर कुंभ दड़ो ऐं तलार में बि कलम धड़नि जो एहतजाज सखर में वकीलनि बि एहतजाज करे अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी जो मुतालबो कयो कलम धड़नि जो चवणु आहे त ज़ुल्म ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण ते साहिबनि खे सज़ा ॾिनी पई वञे अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब करायो वञे डाक जे बाज़ार में ट्रैफिक पुलिस ते फायरिंग टे पुलिस अहलकार शहीद वज़ीराबाद बाज़ार में ट्रैफिक पुलिस ते फायरिंग में एएसआई असमतुल्लाह समेत टे पुलिस अहलकार शहीद थी विया घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ पारां टिनि पुलिस अहलकारनि जे शहादत ते ॾुख जो इज़हार दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ शहीदनि जूं ॾिनल क़ुर्बानियूं ज़ाया न थींदियूं केपीअ जूं हालतूं गवर्नर राज लॻाइण जहिड़ियूं आहिनि पर वफ़ाक सब्र जो मुज़ाहिरो करे रहियो आहे केपीअ जे गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ चयो आहे त सदर हिदायत कई त केपीअ में गवर्नर राज लॻाए छॾींदुसि केपीअ में जंग वारी सूरत हाल आहे पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ायुनि जूं ॻाल्हियूं पई करे पीटीआई जे लॉन्ग मार्च लाइ तारीख़ वरी तब्दील थींदी सोहेल आफरीदीअ खे सलाह आहे त मार्च ख़तमु करे छॾे

सलमान अक्रम राजा बि हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आश कई। पीटीआई अॻवान सलमान अक्रम राजा जो चवणु आहे त लॉन्ग मार्च मुलतवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो जीअं पंहिंजे फ़ैसलनि ते नज़रसानी करे सघनि। हुकूमत सां जेके ॻाल्हियूं थींदियूं उन्हनि ते अमल कयो वेंदो।

0: अमन न हूंदो त तरक्की कीअं थींदी। केपीअ जे अक्सर इलाइक़नि में दहशतगर्दीअ जो राज आहे। वफ़ाकी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो आहे त केपी हुकूमत बाबति हक़ीक़तूं जल्द अवाम जे आॾो आणींदासीं। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत जो ध्यानु रुॻो क़ैदीअ जी आज़ादी ऐं इतिजाह ते आहे।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजो। पहिरियों कदम वधायो।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।
3: असली चीजां चारों मसालों जी सुन्याना पर ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डीसी करे खरीद कंदा। जीजान चारों मसालो, ढोरे जो हाजमो दुरुस्त, जीजान चारों मसालो, ढोरे सेहतमंद, जीजान चारों मसालो, जीजान चारों मसालो, हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03000338569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सूमर।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सोहेल आफरीदी जे कदमन मां लगी रहियो आहे त केपी हुकूमत दहशत गर्दन सां गडियल आहे. गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सोहेल आफरीदी न हलंदो. पीटीआई बानी जी आज़ादीअ खां पोइ पीटीआई खे ॻाल्हियुनि जी आश बि ॾियूं था. गवर्नर फैसल करीम कुंडीअ चयो त सूबाई हुकूमत अहिड़े हद ताईं न वञे जो गवर्नर सोहेल आफरीदीअ खां पोइ पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बि हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आश करे छॾी. पीटीआई अॻवान सलमान अकरम राजा चयो आहे त लॉन्ग मार्च मुलतवी करे हुकूमत खे वक़्तु ॾिनो आहे. पंहिंजनि फैसलनि ते नज़रसानी करे हुकूमत सां तय थियल ॻाल्हियुनि ते अमल कयो वेंदो.
4: असां अलाह चाहियूं था अॼु सिंध खां अपील था कयूं फिल फोर जेको आहे थो अजीम शाह खे आज़ाद कयो वञे.
5: अॼु असांखे धमकी मिली रहियो आहे, अॼु असांखे अगवा कयो थो वञे.
6: असांखे जेको आहे मुआशिरे जो आवाज़ आहे, मज़लूम कॾहिं हुन जो को दाद फरियाद न थींदो आहे, किथे बि हुनजो सदारत न थींदो आहे.
7: नारियल कल्चर जेको आहे त हिकु किरोड़ रुपयो भूंगो तलब करनि था, इहो किथां जो कानून
8: आहे. अॻे कतक थींदा, हाणे अगवा करे मुख़्तलिफ़ मुतालबा कया वञनि था.
9: हथु सचु लिखण वारा साथी उन्हनि खे पंहिंजो सचु न वणियो, इन जे करे असांजे साथी बेबाक साहबीअ खे अगवा कयो आहे.
10: जेको बेबाक साहबी आहे अज़ीम शाह, हुनखे फुल फोर आज़ाद सिंध पुलिस किथे निंड में सुठो पियो आहे, अफ़सोस सां चवणो थो पए. असां हिन अगवा जी सख़्तु लफ़्ज़ मज़म्मत था कयूं.
3: KTN News खानपुर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे अगवा खे ॿ ॾींहं थी विया पुलिस मुगवी साहबीअ खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम. पुलिस जी कार्रवाई बि ॻाल्हियुनि ताईं महदूद. अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ अमली क़दम न खयो. अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज बणियल मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा. घोटकी, नौशरो, फिरोज, गंबट, उबावड़ो, मीरपुर माथिलो, ठरी मीरवा, चक, बख्शापुर ऐं बानसैदाबाद में एहतजाज कयो वियो. जरवार, खीरपुर, दोदापुर, कुंभत, दड़ो ऐं तलार में बि कलम धणी जो एहतजाज. सखर में वकीलनि बि एहतजाज करे अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबीअ जो मुतालबो कयो. कलम धणियुनि पारां अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबीअ जो मुतालबो. केपीअ जे इलाइक़े टांक में दहशतगर्दनि जी पुलिस ते फायरिंग, टे अहलकार शहीद. वज़ीराबाद बाज़ार में दहशतगर्दनि जी ट्रैफिक पुलिस जो एएसआई असमत अल्लाह समेत टे अहलकार शहीद थिया. घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ पारां टिनि पुलिस अहलकारनि जे शहादत ते ॾुख जो इज़हार. दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे वारे अज़म जो वर्जा. $1.20 अरब जी किस्त लाइ IMF ऐं पाकिस्तान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं. अॼु IMF मशीन नाणे वारे वज़ारत सां ॻाल्हियूं कंदो. IMF मशीन जूं चइनी सूबनि जे नाणे वारे खातनि जे इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं. ज़रियनि जो चवणु आहे त टैक्स नेट वधाइण ऐं सूबनि खां टैक्स ऐं नान टैक्स बाबति आगाह कयो वेंदो.

0: अमरीकी सदर ईरान से इन हफ्ते गालियों थियण जो इम्कान जाहिर कर छो। डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है त उम्मीद है त अमरीका तरफा गालियों कंदड़ हलंदड़ हफ्ते में ईरान से गालियों कंदा। अमरीका जंग खटी चुको है पर कार्रवाई मुकम्मल तौर से खत्म न थी हैं। मिड टर्म ईरान से हमलो कर सका तो ईरान खिलाफ जंग जल्द खत्म थियण की उम्मीद है। असो बुनियादी मकसद ईरान के जोहरी हथियार ठाण का रोकना है। ईरान खिलाफ फौजी मुआशी सतह से कामयाबी मिली रही है। ईरान अमरीका से बीहर जंग करण लाइ भी तैयार है। सफारतकारी डां वापस अचण लाइ को भी जवाब ना। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राची है तहरान जंग जो खात्मो चाहे तो आबन अर्म्स खोलने लाइ भी तैयार आयो। अमेरिका जंग खत्म करे असाजा मंजमंद असासा बहाल करे पेट्रोल विक्रो करण ता पाबंदी हटाई वजन।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयू आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमे शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैर वठो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।

0: जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर 03000 3105109 03000 3105109।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
2: खुश खबरी अपनी जल्द को दे नहीं।

0: ना दा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ई हले थो मो पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
0: मजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
1: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पर
2: राबते लाए हा मली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: सोनी अज त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे।
1: हा साईं, ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे।
0: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे।
1: चाचे, जुम्मनि जी खु़शहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि। हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सिहतमंद थियनि था, गोश्त सां गॾोगॾु खीर बि वधे थो।
0: वाह सोनी, वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई। पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइनि, ॿुध अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं, हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ डार्क स्पॉट्स को कर और दे खुदरलो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जब क्लिनिक सांपेटो कभी रोड बची मशहूर डॉक्टर नबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर जुमे छह फीस जे चेकअप कयो वी रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पे अमलो पुनिचो कन जो वहन कर ब्लड प्रेशर फॉलिंग दिली जो वदन दस बीस पथरी मसाने जी पथरी जो इलाज कयो वन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरियूं ॿारनि वधण मर्दन ऐं औरतुनि इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खु़शख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज़ थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
6: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
5: खुशखबरी।

0: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 03013803847।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: ऐं तव्हां खटे सघो था कार मोटरसाइकिल एलईडी टीवी मोबाइल
8: जियो मुरकंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो। मौजूद सामईन ही आहे जीए FM 88 रेडियो नेटवर्क जो जीए FM मातली जीए FM मीरपुर ख़ास जीए FM मटियारी GFM सकरंड GFM मेहरापुर GFM मोरो GFM लाड़काणो ऐं GFM सखर जो आवाज़ हाज़िर आहे अवां जो पंहिंजो शो सिंध डीए जी शाम। सिंधड़ीअ जी शाम अव्हां जे नाम कंदे हाज़िर अव्हां जो आर जे अव्हां जो पंहिंजो यूनिस बकारी। اواں جے سکھ ای سلامتی جو کھوڑ ساریوں دعاؤں کھنی اواں جے خدمت میں حاضر جی موز سامعین یقیناً اواں ہوندا ٹھیک ٹھاک ای حشاش وشاش اساں جی دعا ہے تے تواں ہمیشہ خوشباش ہو جو ای شال دکھیو دین دسو سائیں مجا موسم مٹجی رہی ہے جدے موسم مٹبی ہے تو یقیناً پنجا نشان چھڈے ویندی ہے سخت گرمیوں وری ڈیہن جو سخت گرمیوں کا پوئے رات جو ماک ماک تھدی ہوا کہاں نسری چکی ہے سر نسر نسرن جے ویجو ہیں ببرن جو پھلڑیوں ون ٹن ساوا سرسبز ہیں ہر طرف ماحول موتر ہے

सिंध जी सरज़मीन जूं सारियूं तयार आहिनि ऐं उन जा सुगदासी चांवर ऐं उन्हनि जी खु़शबू। जिते जिते जेको बि माहौल आहे उहो समूरो माहौल अव्हां सभिनी जे लाइ आहे ऐं उन माहौल खे इंजॉय कयो। ऐं अॼु के शो में यकीन अॼु असां अव्हां सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं खोड़ सारियुनि ॻाल्हियुनि में हूंदा तव्हांजा मैसेज शामिल। त पोइ तव्हांखे लिखणो आहे पंहिंजी मोबाइल मां MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखजो। 88 81 888 1 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो ऐं हा ॿिए कलाक में यानी 6 खां 7 वॻे ताईं वारे कलाक में अव्हां जूं लाइव कॉल्स बि शामिल कंदासीं। प्रीतीअ रीत जे पंधनि ते पहिरीं हलूं था आवाज़ जे पासे जिते सैयद वज़ीर अली शाह जो मिठड़ो आवाज़ आहे। अचनि गची।

वेलकम बैक मुझे समीन ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क शो बुध पे सिंध डी जी शाम आर जे अवे यूनुस बकारी अवसाण मुखातिब है। जेकर शो में शामिल थे चाहो था जल्दी से लिखो MTI स्पेस दियो पेंजे गोठ शहर जो नालो लिखो पेंजे नालो 888 यानी 8881 ते मैसेज जारे मोकिलजो अवना मैसेजेस जरूर शामिल करासी। आई हाँ GFM 88 के ध्यान सा गौर सा प्यार सा पेंजाइप सा बुधण लाए अवज मेहरबानी।

शामिल कंदा सी अवांजा प्यारा प्यारा मैसेजिस गोठ पुनू खान पंवर खां असांखे रुस्तम अली पंवर ॿुधे पियो तमामु घणी महिरबानी मोहबतूं भलीकार ऐं कुंडरी खां चोहन कुमार कोहली डॉक्टर अनीता चौहान संगीता पारस ॿुधे पई अवां जूं तमामु घणी महिरबानी रोहिड़ी सखर खां नज़ीर अहमद मंगरियो ॿुधे पियो ऐं अवां लिखियो शाम जे हसीन पहर में उतर जे थदड़ियुनि हवाउनि में अवां जो मिठड़ो आवाज़ ऐं नमकीन आवाज़ मन खे मोहेर पियो। अच्छा जी मोहबतूं तव्हांजी भलीकार लखतौर ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे वॾा हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली झंडो मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासकेली अवां जूं बि तमामु घणी महिरबानी वॾा वॾ अवां जा जो अवां असांखे ॿुधो पिया थैंक यू भलीकार चवंदासीं। ऐं जनाब असांखे ॻोठ जी जनाब ॻोठ आहे आलम खान जरवार उतां खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मोहम्मद इदरीस जरवार यादि कयो अवां जूं बि तमामु घणी महिरबानी अवां खे बि चवंदासीं वेलकम ऐं भलीकार ख़ुशि हुजो आबाद हुजो तारनि में चंड ऐं खीर में कंध हुजो तमामु घणी महिरबानी।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, MA, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सोम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जी FM 94।

चाहियो था तो हाणे ई मैसेज कयो, लिखो MTI स्पेस ॾियो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलजो। ॾिसंदासीं त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो। जी हा जनाब, असांखे ज्वाइन कयो आहे, मैसेज मोकिले असां साण शामिल थी चुका आहिनि, उन्हनि महिरबानी जा शामिल करे वठूं। मैसेज ॻोठ खबड़ भील खां असांखे रामचंद ॿुधे पियो, उदासी परवेज पाकिस्तानी ॿुधे पियो, ऐं सुहिणो शावेज सुल्तान ॿुधे पियो। अवांजी तमामु घणी महिरबानी, भली कार ऐं अवां असांजे शो में काफ़ी ॾींहनि खां पोइ शामिल थिया आहियो, अवांखे बि चवंदासीं वेलकम, भलकार ऐं ख़ुशि आमदीद जो तव्हां जो कि शो जो हिसो बणिया। ऐं जनाब असांखे ज्वाइन कयो आहे, जी हा असांखे ज्वाइन कयो आहे कोहिस्तान जे बडे जबल खां दीदार ॿुधे पियो, वञो सैताणी साहब ऐं इरशाद सैताणी रुस्तम अली पंवर, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, तव्हां असांखे बडे जबल खां ॿुधो था। ऐं ॻोठ सरफराज राजड खिपरे खां सोहराब ॿुधे पियो, अवांजी तमामु घणी महिरबानी। सुमार भील ॿुधे पियो, दिलीप कुमार ॿुधे पियो ऐं अब्दुल हकीम बजीर ॿुधे पियो, तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। वॾा वॾ नोटो खां असांखे ॿुधे पई नंढड़ी रवीना कुमारी ऐं कमलेश कुमार ऐं रजीना कुमारी रामचंद कुमार, अवांजी तमामु घणी महिरबानी, अवांखे बि चवंदासीं वेलकम, बहितरीन शो तव्हां लिखियो, थैंक्यू, तमामु घणी महिरबानी ऐं भली कार चवंदासीं। ओके जनाब साईं, आवाज़ साथ में अवांजो मोहबत न भरे सां। ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क। कोठा जी सुल्तान लुंड खां प्यार ली लुंड ॿुधे पियो, अवां जी बि तमामु घणी महिरबानी। वॾा वॾ ऐं रोहड़ी खां मोहम्मद सुलेमान ऐं अब्दुल अहमीद ऐं अब्दुल सतार शेख ॿुधनि था, तमामु घणी महिरबानी। अब्दुल रज़ाक हालेपोट ॿुधे पियो, किरोड़े कुर्ब ऐं वेलकम चवंदासीं तव्हांखे। गुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॿुधे पियो, अवांजो तमामु घणी महिरबानी। नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहिबु ऐं आरज़ू असलम जलालाणी, अवांजा वॾा वॾा ख़ुशि हुजनि।

पिथौरो खां मोमिन शहर ॿुधे पियो। मोमिन शहर साहिब, तव्हांजो महिरबानी, मां पिथौरो खां असांखे जॉइन कयो आहे। किरण कुर्ब तव्हांजा थैंक्यू ऐं भली कार चवंदासीं तव्हांखे।

चूहड़ जमाली खान, आज नगर खान जमाली, वन मेहरबानी मोहम्मद हाशिम जमाली, मोहम्मद मेहराब जमाली, गुलाम कादर जमाली प्रोग्राम के पसंद कयो। थैंक यू भलीकार मोहब्बत हो, खुश हो, आबाद हो जो। आई जनाब अवां असांखे याद कयो है।

लियाकत दर्दी जो मुझे भा ऐसा जमाल दोस्त मामंद हाशिम जोय की फरमाश शाहनवाज मला इमरान जमाली सिकंदर जमाली सिकंदर पावर शाहनवाज जमाली रईस मुमताज़ जमाली खास फरमाश आमंद अली जमाली हामिद अली जमाली।

आई स्पेस पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखंदा 8881 ते मैसेज मोकिलींदो त कंदासीं बिल्कुलु शामिल। पोइ इंतज़ार पिया कयूं अव्हां जे मैसेज जो। तेसीं ताईं आवाज़ ई दुनिया जो हिकिड़ो मैसेज, ज़बरदस्त ट्रैक नगमा नाज़ जो।

जी जनाब, कीअं पियो लॻे शो अॼु को सिंधड़ी जी शाम? यकीन उन खां पहिरीं जो असां न्यूज़ ब्रेक लाइ हलूं, असां हलंदासीं हिकिड़े ट्रैक जे थ्रू ऐं ज़बरदस्त आवाज़ ॿुधाईंदा तव्हांखे वठी हलंदासीं ख़बरुनि जे लाइ। सो त पोइ ॾिसूं था पहिरीं ट्रैक ॾांहुं वधूं।

ठीक टिनि मिंटनि खां पोइ ख़बरूं हूंदियूं ऐं ख़बरुनि खां पोइ कमर्शियल ब्रेक ऐं बिना ब्रेक वापसि ईंदासीं असां छहें वॻे खां पोइ पोइ लाइव कॉल जे लाइ नंबर ॾींदासीं हुन नंबर ते कजो कॉल अवां जूं कॉल्स शामिल कंदासीं छहें वॻे खां पोइ वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा मसाला फूल का है फूल किधर जाए

जी जनाब रांझन सखर से सुन रहे हैं, कहते हैं आर ओ रांझन सखर प्लीज प्ले सरबंत सिंधी। बिल्कुल सरबंत सिंधी साहब सदा बुधी सी न्यूज ब्रेक का पे तो मजे सा ट्रैक वी वो ब्रेक वी वो बाकी गाल बिना ब्रेक के कदासी छो तो प्रोग्राम है जारी और सारी ब्रेक का पेसी इंदो यूनिस बकारी।

0: check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा, ये कहते हैं कि मैं और खतरनाक बन जाऊंगा। मैं आज इसको इस केपीके से और इस पेशावर से ये कहना चाहता हूं कि अफरीदी साहब आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, वही सलाखों के अंदर होंगे। जो लूट मार आपने किए उसका हिसाब किताब आपको देना होगा, जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आपको देना होगा। जो आप पहले से वो याद
4: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगंदो या वडो वजीर तब्दील थींदो, वफाकी हुकूमत जो मुख्तलिफ़ ऑप्शन ते गौर वीचार। कानून वारे वफाकी वजीर सेनेट आज़म नज़ीर तार चयो आहे त एमरजेंसी बाबति आइन बिल्कुल वाज़े आहे, हालतूं अहिड़ियूं हुजनि ऐं आइन जी घुर्ज हुजे त एमरजेंसी लॻण घुर्जे। वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो त केपीअ में गवर्नर राज जो घुर्जूं पूरियूं आहिनि। केपी जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी सुठो माण्हू आहे। खैबर पख्तूनख्वा में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो, गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सोहेल आफ़रीदी न हलंदो।

0: आरंभ में डेढ़ के बरस कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहाँ पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस कुर्सी की। जो मेरा मौका पहले दिन था जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ, हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी बुलाई है, इसमें हम सब की बुलाई है।
1: गवर्नर राज जी धमकियन का डिजण वारो न आया कुर्सी खातिर पंजे नजरिए ता हथ न खड़ंदुस। खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सुहेल आफरीदी है अवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नो वही सके, मुख्य को भी फिक्र न है, रियासत के पंजी पॉलिसी तब्दील करण घुर्जे। पीटीआई अगवान सलमान अकरम राजा चयो लॉन्ग मार्च मुलतवी कर हुकूमत के वक्त डनो है, पांजन फैसलन से नजरसानी कन, हुकूमत से तय थन्द गाल अमल कर वो।
2: ये आपकी जो मोहब्बत है अफगानिस्तान के साथ, आपको अब ये फैसला करना होगा कि आप पाकिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है। इट्स एज क्लियर एज दैट।
1: पीटीआई के पाकिस्तान ए अफगानिस्तान में कहीं एक की चूंड करनी पौंदी। सोहेल आफरीदी इंतजामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर भी नाकाम थी वो है। सतसमा वफाकी वजीर अता ताड़ चयो तो सूबे अंदर तबाही थी चुकी है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के अरबे रुपया डिना, बुधाया वे तो पैसा काडे वन। ममलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो केपी हुकूमत बुधाये तो संदन अफगानिस्तान बाबत रवियो नरम छो है। सरहद पार थन्दड़ हमल में 70% अफगानी शहरी मुलविस।
3: असा आलात करंगा आई भी सिंध का अपील था क्यों सिल फोर जो तो अस्सी साल के हाथ तो वे
4: अज असा के धमकी मिली रो अज असा के अगवा पे तो वे
5: असि जो मुआशरे जो आवाज है मजलूम जैसे उनको को दाद फरियाद न थन्द किथे भी सदारत न थन्द है।
6: नारियल कल्चर जो एक करोड़ रुपये भूंगो तलब करन था। यो काठो जो कानून आ अगे कतल थींदा हाणे अगवा करे मुख़्तलिफ़ मुतालबा कया वञनि था।
7: हक सच लिखण वारा सहाफ़ी उन्हनि खे पंहिंजो सच न वणियो, इन जे करे असांजे सहाफ़ी बेबाक साहबीअ खे अगवा कयो आहे।
8: जेको बेबाक साहबी आहे अज़ीम शाह हुनखे फुल फोर आज़ाद सिंध पुलिस किथे निंड में सुठो पियो आहे, फुलफा चवणो थो पए। असां इन अगवा जी सख़्त मज़म्मत था कयूं।
1: केटीएन न्यूज कानपुर महल के रिपोर्टर अजीम सियाल के अगवा के बी थी वया। पुलिस मुगवी सहाफिया के बाजियाब करण में नाकाम, पुलिस की कार्रवाई बे गाल महदूद। अजीम सियाल के बाजियाबी लाए अमली कदम न खो। अजीम सियाल के बाजियाबी लाए कलमदानी सरापा एहतजाज बणियल, मुख्तलिफ़ शहर में मुजाहरा ए धरना। बोटकी नौशरो फिरोज गंबट उबावड़ो मीरपुर माथेलो ठरी मीरवा चक बख्शापुर बान सईदाबाद में एहतजाज कर वो। जरवार खैरपुर दोदापुर कुम दड़ो ए तलार में भी कलमदड़न एहतजाज रिकॉर्ड करायो। सखर में वकीलन भी एहतजाज कर अजीम सियाल की बाजियाबी मुतालबो किया। कलमदड़न पारा अजीम सियाल की बाजियाबी मुतालबो।
2: केटीएन न्यूज का सीनियर रिपोर्टर हसन के कच्चे में अगवा हो गया है। सर आपने उस सवाल से
9: मैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को यह केस रेफर करेंगे, आप तफसीलात हमें फराहम करें, उसका भरपूर नोटिस है।
1: सुदसमा वफाकी वजीर अता ताड़ केटीएन न्यूज के रिपोर्टर अजीम सियाल की अगवा जो नोटिस वरतो। अता ताड़ चयो है तो सहाफी अजीम सियाल की अगवा की मजम्मत क्यूं था, वाके बाबत तफसील लिना वन, सहाफिया की बाजियाबी लाइ घुर्बल कदम खड़ जरूरी है।
10: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
11: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003
12: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन का आजमायल सखर वारन जो जीजान डोर चारो मसालो जानवरन में खीर अई गोश्त बधाए अम्हा के खुशहाल बनाए हर पंसार अई जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब है
13: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000310509 03003105109

0: लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-46-0100।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk। वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण जंदा पहिरियों कदम वधायो।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
6: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
6: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: माली पठानपट के वारो मुनीर सयाल।
1: तमाम घणी मोहब्बत तां जे दोस्तन जो।
0: मेहरबानी।
1: लख थारा लख थारा। जी जनाब, काल ते रिसनासी के रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: साईं वालेकुम अस्सलाम।
1: साईं केर साहब ऐं किथा का?
2: साईं हुसैन बख्त सियाल नवाबी संगत खां।
1: छा हाल आ, खुश आयो, ठीक आयो सियाल साहब?
2: अलहमदुल्ला साईं, बिल्कुल आऊं खुश आया। अवां की आ साईं? खुश आयो, तबीयत ते सही आ?
1: अलहमदुल्ला, तवां जी दुआ लगी पई है, बिल्कुल ठीक ठाक ऐं खुशबाश आहियां।
2: तमाम
1: घणी खुशी थी मेहरापुर जे नगरी में बुधो पिया। सदाई सुखिया हुजो, थैंक यू, खुश हुजो, आबाद हुजो। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी वक़्त थियो आहे शो वरी शुरू थी वियो आहे। हर सूमर ऐं अंगारे ते शाम जो 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं गॾु हूंदा आहियूं।
2: इंशाल्लाह सर, ऐं अॼु असांखे असां जीअं रेडियो ट्यून कयो त अव्हांजो मिठड़ो आवाज़ ॿुधोसीं त जी पुछो त बेहद ख़ुशी थई त असांजो भाउ असांजो दोस्त यूनुस साहब वरी वापसि आया आहिनि ऐं असां लाइ प्रोग्राम कनि पिया। ॾाढी ख़ुशी थिए। असां वरी बि अव्हांखे दिलि जे गहरनि सां मोस्ट वेलकम चऊं था त उमेद रखूं था सदाई असां लाइ प्रोग्राम कंदा रहंदा।
1: महिरबानी साईं, किरोड़े कुर्बत तव्हांजा लख थोरा। दोस्तनि जा नाला खणणु चाहियो था?
2: साईं बसि आऊं जम्मू में पंहिंजी नवाज़ संगत वारनि खे सलाम ॾियां थो ऐं मुंहिंजी प्यारी बि संगत आहे गुला जी संगत वारनि खे सलाम, अव्हां खे अव्हां जी पूरी टीम खे सलाम ऐं अव्हां खे वरी मां दुआ ॾियां थो त अलाह से अव्हां खे हमेशह ख़ुशि ऐं आबाद रखे ऐं सितारनि में चंड हुजो जीअं अव्हां जो खीर में खंड हुजो ईअं
1: साईं। महिरबानी,
2: थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
1: जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। यकीन साध ऐं आवाज़ साथ में प्यार ऐं पंहिंजाइबे जा रंग शामिल ऐं रंगनि में अवां शामिल। अवीं सभु असांजा ॿुधंदड़ असांजी कुल काइनात आहियो। ॾिसंदासीं त हाणे असां गॾु कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां? रुस्तम अली पंवर साहब, खुश आयो, ठीक आयो, चङा भला, मतारा
2: जोड़।
1: अल्लाह पाक जा अनेक अहसान दुआऊं आहिनि। अवां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे रुस्तम? आमीन आमीन आमीन, महिरबानी साईं। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
2: असांजा दोस्त आहिनि ॿुधनि पिया, रहमत अली जखराणी, नाज़ नंगर खान, जमाली दिलीप कुमार, मेघवाल चोहन कुमार कोली,
1: जी जी
2: दोस्त ॿुधनि पिया, सभिनी खे असांजे तरफ़ां सलाम।
1: वालेकुम सलाम, थैंक यू सर, थैंक यू, महिरबानी। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में वरी बि ॾिसंदासीं त कॉल ते असांखे केरु आहे ऐं बल्कि कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: जी सर, वालेकुम अस्सलाम।
1: साईं केर साहब ऐं किथां खां?
3: मिठामाणो ॻोठ हाजी सुल्तान लुंड खां, प्यार अली लुंड।
1: प्यार अली लुंड साहब, ख़ुशि आयो, ठीकु आयो, चङा भला, मतारा जोड़।
3: सभु ख़ैरु आहे अलहमदिल्ला, मालिक जे करम आहिनि। सर, मां ॿुधायो, ख़ुशि आयो, ख़ैरियत सां आयो?
1: अलहमदिल्ला, अव्हांजी दुआ लॻी पए। तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे प्यार अली?
3: जी सर, सलाम ॾियणु चाहींदासीं दोस्तनि खे, दिलीप कुमार मेघवाल, मलिक मोहम्मद बलोच, रुस्तम पावर ऐं रामचंद कुमार मकवाणो।
1: तमामु घणी महिरबानी साईं, लख थोरा। जी जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ में हिकड़ी वधीक कॉल अटेंड कंदासीं, ॾिसंदासीं केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। सबानाज़, ठीकु आहियो, चङा भला आहियो? शुक्र अलहमदुल्ला, तव्हांजी दुआ लॻी पई आहे। तव्हांखे शो कीअं थो लॻे? तव्हां मुंहिंजा फैन आहियो, मां तव्हांजो थोराइतो आहियां। अलाह साईं ख़ुशि रखे तव्हांखे, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। प्रोग्राम जे हवाले सां ॿियो कुझु चवणु चाहींदा?
4: तव्हांजो प्रोग्राम ज़बरदस्त हले, बाक़ी आप ई तबसुम लाइ या पोइ त
1: तबसुम ई शो ॿुधंदी हूंदी त ज़रूरु तव्हांजे हवाले सां कॉल कंदी, शो में शामिल थींदी ऐं ॿुधाईंदी त शो में कॾहिं ईंदी। थैंक यू। हा इनशाला इनशाला तव्हां जल्दी ॿुधी सघंदा तबसुम खे, तमामु घणी महिरबानी, लख थोरा।

0: ही आहे GFM88 रेडियो नेटवर्क सिंधड़ी जी शाम आई अवां जे नाम ॾिसंदासीं त असां सां गॾु हाणे कॉल ते केरु आहे. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम जन साईं, छा हाल आहे? कुझु आयो ख़ैर?
0: अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई. केरु साहब ऐं किथां खां?
1: सर, कुंदरी खां चोवन कुमार कोली अॼु थो ॻाल्हायां. सर,
0: छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो चोवन? अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई आहे. ए वन लॻा पिया आहियूं. अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे?
1: दोस्त हीअं वेठो हूंदो आहे कासम, त तकरीबन पासे में वेठो हूंदो कासम लचवाणी आहे. दोस्त असांजो तव्हांखे रुस्तम पवर बि ॿुधे पियो, ऐं गुलाब गुल भील ऐं हरेश खेताणी सां गॾु ॿुधंदो आहे. चेलार में सभिनी खे सलाम सर.
0: वालेकुम असलाम. कहिड़ो कुर्ब मिठा माण्हू, कहिड़ो कुर्ब तव्हांजा? थैंक यू. चोवन कुमार कोहली जी कॉल ऐं ॾिसंदासीं हुन खां पोइ असां अगरि केरु हूंदो. जी जनाब, कॉल ते असां सां जुड़ी चुका आहिनि केरु, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहिनि. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम साईं, छा हाल आहे? रोरी सखर खां तव्हांजो पुराणो नज़ीर अहमद मंगरियो.
0: साईं नज़ीर अहमद मंगरियो साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला. अलहमदुल्ला, अवां जी दुआ लॻी पई आहे. तव्हां ख़ुशि आहियो, आबाद आहियो?
2: माशाला, ज़बरदस्त तव्हांजो प्रोग्राम. अलाह जा एहसान, उतर जे थधे हवाउनि में तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदा.
0: साईं भला भाग असांजा, अवां जहिड़ा महबूब दोस्त असांखे ॿुधनि, ॿियो छा घुर्जे?
2: मिठड़ो आवाज़ ऐं अंदाज़ तव्हांजो लुत्फ़ ॾेई रहियो आहे हक़ीक़त में.
0: कहिड़े कुर्ब मिठो माण्हू, कहिड़े कुर्ब? अवां सां गॾु ॿियो केरु केरु ॿुधे पियो?
2: काफ़ी दोस्त आहिनि, पर थी सघे तव्हां थोरो आहिस्ते पोइ सुमिरे जो कलाम ॿुधाईंदा.
0: ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, कीअं कोन ॿुधाईंदासीं. असांखे हिते हलणो आहे, अवां सां गॾु ज़िंदा रहणो आहे, त ॿुधाईंदासीं.
2: अलाह ख़ुशि रखंदो आहे. नबन बिजराणी तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे. सिकंदर अली शबाणी आहे.
0: जी जी.
2: मोहम्मद सुलेमान शेख ऐं अब्दुल महमीद शेख तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधे थो.
0: जी जी.
2: या काफ़ी जेके बि दोस्त आहिनि, चोवन कुमार कोरी सलाम ॾींदा.
0: वालेकुम असलाम. कहिड़े कुर्ब मिठो माण्हू, कहिड़े कुर्ब? थैंक यू. महिरबानी. ओके जनाब, साज़ ऐं आवाज़ साथ में असां साण अवां जो साथ, ऐं हिकु वधीक कॉल अटेंड कंदासीं, ॾिसंदासीं त कंहिंजी आहे कॉल. जी जनाब, हलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम भाउ, कहिड़ो हाल आहे?
0: भाउ दुआ आहे. भाउ तव्हां केरु पिया ॻाल्हायो?
3: जी घोट बाबू सरपारकर खां ॻाल्हायो पिया, दिलीप कुमार मेघवाड़.
0: छा हाल आहे दिलीप कुमार भाउ?
3: जी जी, अलाह जो शुक्र आहे, हाल कुझु बहितर आहे न.
0: हाणे कुझु बहितर आहिनि. अच्छा, ऐं अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे?
3: जॾहिं तव्हां सां ॻाल्हि कयूं था न, ॻाल्हाईंदा तॾहिं हाणे लफ़्ज़ कटिजी वञे थो, बिल्कुलु बहितर थी वञे.
0: न त पोइ ईअं मां तव्हांखे रोज़ कॉल करियां, जेकॾहिं मुंहिंजी कॉल ते तव्हां बहितर थी सघो था, त मां सॼो ॾींहुं तव्हांखे कॉलूं करण लाइ तयारु आहियां.
3: जी जी जी जी, अलाह तव्हांखे ख़ुशि रखे. मूंसां गॾु कुझु दोस्त ॿुधनि पिया, हुनखे शामिल कंदासीं.
0: साईं साईं, भले नाला वठो हुननि जा.
3: ॾियारली लुंड, रोस्तम पवर, रामचंद मकवाण, मलक मोहम्मद बलोच, मोहम्मद साले लगारी. अॼु थोरा नालो वठंदा छो त ॿियनि खे वारो ॾियो, सभिनी खे सलाह.
0: ॾाढो सुठो कमु हाणे तव्हां शुरू कयो, इहो सही आहे. पहिरीं एतिरा नाला वठंदा आहियो, चङो ख़ासो आरजे एतिरा नाला न वठे जेतिरा हिकिड़ो लिस्नर नाला वठी वञे थो. बाबा, सॼी सिंध जेका आहे न, उहा पंहिंजा दोस्त आहिनि, भाउ आहिनि, भेणूं आहिनि. पर हाणे जंहिंजो नालो तव्हां न वठंदा, उहो नाराज़ थींदो. हिन खां बहितर थोरा हिकिड़ो ॿ नाला वठो पंहिंजे घर भातियुनि जा, पंहिंजा जेके आहिनि छोकिरा हुननि जा, ताकी ॿियनि खे चइजे त यार वरी ॿिया था कावड़ कनि. कुर्ब तव्हांजा, कुर्ब तव्हांजा. थैंक यू. भलीकार चवंदासीं तव्हांखे साईं मुंहिंजा. हा, चोरी चोरी कोई कंहिंसां नेण मिलाए वेठो आहे. कॉल अटेंड कंदासीं, ॾिसंदासीं केरु आहे असां सां गॾु. हलो, अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम अस्सलाम साईं, किथे जबल खां बदरुद्दीन चांडिया साईं?
0: बदरुद्दीन चांडिया साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
4: साईं मानी हाज़ुर आहे. साईं मानी.
0: साईं हींअर ई मानी पिया खाओ संजे मां?
4: जी जी साईं. कुझु मुंहिंजा दोस्त आहिनि वॾा.
0: जी जी.
4: फहीम चांडियो.
0: जी जी.
4: ਬਾਬਰ ਜਾਂ ਦਿਓ
0: ਜੀ ਜੀ
4: ਦਿਲਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿਓ
0: ਜੀ
4: ਅਦਰਾਮ ਜਾਂ ਦਿਓ
0: ਅਸਦ
4: ਜਾਂ ਦਿਓ
0: ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
4: ਓਕੇ ਓਕੇ
0: ਓਕੇ ਓਕੇ जी जनाब इकरार वही दे आवाज से गर कॉलू बचन पयो दिसुना केंजी कॉल है हेलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम
0: कीर साहब है किथा का
5: तै गदर चांडे को बला काछे में गुड गुलाम तो जाने का
0: जी छाल चांडे साहब खुश आयो
5: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक सई आसान रबा गरम दुआ सई ता ताफा जाल जो खुश आयो तै टाइम मजे नेमन
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह तमा सा कदी भी केर पे बुदे
5: मुझा मारो तो मजा कर साजिद हुसैन चाहो नगर सिंह चाहो मुझा भैर नाला दा चाहो मौला दा चाहो मुझे प्यारो दोस्त जलब कर चाहो सही
0: सही सभी जो मेहरबानी लख थोरा मिठा मानू ओके कुर्बता जा आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो जी एफ एम सखर जी एफ एम लाड़कानू जी एफ एम मेरपुर खास जी एफ एम मोरो जी एफ एम मेहरापुर जी एफ एम मटियारी जी एफ एम सकरंड जी एफ एम मातली जो गडियल आवाज दिसंदासी कॉल ते केर आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम
6: वालेकुम सलाम
0: साईं केर साहब आहे किथां खां जी ज़ुल्फ़िकार अवां सां गॾु ॿियो केर पियो ॿुधे महिरबानी मिठा माण्हू महिरबानी लख थोरा तव्हांजा ख़ुशि हुजो ओके जनाब ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम
7: वालेकुम सलाम सही चवाल ख़ुशि आहियो
0: अलहमदुल्ला केर साहब ऐं किथां खां
7: साईं आर जे नाल फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॻोठ ग़ुलाम हुसैन जलालाणी लग जोल
0: महिरबानी मिठा माण्हू वेलकम चवंदासीं तव्हांखे तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे
7: हा साईं काफ़ी दोस्त मूंसां गॾु आहिनि हिन वक़्तु असांजो चारो दोस्त रुस्तम अली पंवर रोशन अली पंवर ग़ुलाम रहीम बलोच कुर्बान ख़ासि कली चोवन कुमार कोहली हुन सां गॾु कुझु मुंहिंजे फैमिली जा मेंबर आहिनि जंहिंमें आरज़ू असलम जलालाणी शुजात हुसैन जलालाणी अख़्तियार हुसैन जलालाणी मुख्तियार नाज महबूब नाज ऐं हुन सां गॾु ज़ीशा नैदर जलालाणी तव्हांजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया
0: महिरबानी महिरबानी मिठा माण्हू थैंक यू ख़ुशि हुजो हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक आहे नंढो कमर्शियल ब्रेक आहे हिन दौरान कॉल न कजो कॉल कजो ठीक पंजनि मिंटनि खां पोइ प्रोग्राम आहे जारी ओ सारी हिकिड़े नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो यूनुस बकारी केॾा न वञो
8: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
9: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
10: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
11: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: आई आदी अज त डाडी खुशी पई नजर अची
1: छो न खुश थे आदी जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
0: मां भी वही चवा उन ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स आई जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी आई चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आई दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: अगर कॉल तक कह रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, केर साहब है कितना कहा?
1: इरफान अली थे वो गुलाबी संगत खबरी बिटो ताल का साले पटका।
0: क्या हाल है इरफान अली थे वो साहब, खुश आयो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी साहब बिल्कुल ठीक ठाक आयो, तां बुधायो की आयो? ठीक आयो
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सही एहसान है। अवां सके बि केर पे बुधे?
1: हाँ हाँ रेडियो के ऑन कयो सी तवां जो आवाज बुधो सी, असके दी तो याद न हुयो पर असके चक हुयो तो मतलब तवां अज अचो। अल्हम्दुलिल्लाह काल भी मिली वही वही मेहनत से, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हम काल मिली वही।
0: मेहरबानी मिठा मानू मेहरबानी, हर सूमर ही अंगारे ते शाम जो 5 वगे का 7 वगे तई अवां सा गड हुंदा से।
1: बिल्कुल अजा तो सागो ही टाइम आए ना तवां चे पे खमस पे बींद
0: जी न खमीस ते मुझे नेटवर्क ते प्रोग्राम ना है हुंदो, वो सिर्फ मातली स्टेशन ते हुंदो। हां
1: चलो असावत मातली स्टेशन कदे कदे इंदी आ है, टाइम सागो ही आए अगर जेकर मैसेज आ तचे ता सा बुझी सकू ता तांगे
0: न रात जो हुंदो 7 खां 9।
1: चलो असा कोशिश कंदा से भले न बुझो ता बस शामिल थन दी कोशिश कंदा से
0: तवां दे प्रोग्राम दे मिठा मानो असन एप ते ता बुझी सको ता कोप चैनल को बार जे तांगे पसंद आए तो तुम गूगल से सर्च कौ GFM88 रेडियो नेटवर्क असो अठे स्टेशन तामू आन जैसे क्लिक कौ वो आर जे वाली हाजिरी में
1: तमाम सुठा आर जे आंपेयर रेडियो पाकिस्तान जा जो भी रेडियो पाकिस्तान से कम कर प्राइवेट स्टेशन पे इन तो अंदाज प्रोग्राम करो प्यारो
0: हों मोहब्बत तुम साई मेहरबानी अवं सा कद भी केर पे बुधे।
1: सलाम सिस्टर मिसिस अली ए सिस्टर फौजिया फरजाना सिस्टर दुआ खान राय सुमरो मंता सुमरो हुसैन बगिस्तो हाफिज गुलाम अहमद सांबल बचल जमानी नजीर मंगरियो ए अब्दुल्ला पंगवार जेके दोस्त बंदा सबनी के इरफान अली से बपारा फर सलाम
0: मोहब्बत हूं मोहब्बत हूं। थैंक यू सर, लखथोरा लखथोरा अला फैज खुश हो जो आवाज हो जो। थैंक यू मीठा मानो तमाम घणे मोहब्बत ओके जनाब इरफान अली थेबो साहब सा कॉल ते हाल अहवाल थियो। हाँ हाल अहवाल करण ला कहजी अचे थी कॉल जिसना सी कॉल ते केरा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जो बस बात ताल खुश है खरा
0: अल्हम्दुलिल्लाह। केर साहब है किथा का?
2: सर नोटो थर पार्क कुमार रामचंद कुमार कोहली।
0: रामचंद कुमार कोहली साहब अवां सा कदी केर पे बुधे
2: दोस्त सब बुधन पे सब नाला खड़ी से सभी जो कर्ज थी आयो दिलीप कुमार बुधे पे चोवन कुमार रुस्तम पवार मलक मोहम्मद बलोच प्यार लीलुन गुलाब गुल जेके समाज बुधन पे सिख भर रुस्तम पवार बुध
0: मेहरबानी भला कर्ज लाइण ला मुझे शो हथ आयो अच्छा
2: बस मुख्य याद करना वहां के याद करना नाला नथा वठो
0: नाला वठण ला तां मोबाइल पई है मुझे शो का पो कॉल करे सबनी ना कर्ज लाए जा बाकी कर्ज लाएण ला ही गरीबानु शो जे में आही नी को 30-35 मिनट जे में
2: तो सर एकरो अर्ध मुझे नदड़ो याद अवां जे प्रोग्राम जदे थिए त विंटर वस्कारे में इंटर सियारे में तमाम असा के प्यारो लगदो हकीकत करे असी में इंटर आवाज करंदा है।
0: मेहरबानी मोहब्बत तां जो साईं बिल्कुल कुर्ब कुर्ब लख थोड़ा जी जनाब शॉर्ट ब्रेक है मैं जो वापस पे अच्छा।
3: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
4: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: सिंध की हो तो आवाज प्लीज।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

खीर थर वारण्यूत ब्या बेचारा रुली व्यान सब। हेलो आवाज अच्छे पियो। अच्छा आवाज कटजी हो। ओके जनाब अस का शिकायत को शिकायत या डबल कॉल न करो इन बे जी हक तला हक तलाफी थे रही है हक तलफी थे रही। ओके दिसनासी त केर है सा कहे हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम आवाज अच्छे पियो आवाज कौन पियो।

0: जी केर साहब ऐं किथां खां?
1: कश्मीर खां पठाण खान पटके वारो।
0: छा हाल है साईं? खुश आयो पठाण खान पटके वारा साहब भलीकार।
1: खैर खैर महिरबानी मोहब्बत तुंहिंजो प्रोग्राम सही ॿुधा थो। हेॾे दोस्त ॿुधाए थो पाण वटि हिन टाइम रेडियो मुंहिंजो न आहे।
0: अच्छा छो भला हेॾा वॾा पुराणा लिसनर आहियो रेडियो छो भला केॾां वियो रेडियो?
1: हा रेडियो उहो रखियल सर सेल न अथसि न।
0: अच्छा कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा तबियतूं कीअं आहिनि?
1: खैर खैर तबियत सर महिरबानी मोहबतूं तव्हांजे खैर आहे तव्हां ख़ुशि आहियो तव्हांजी टीम ख़ुशि आहे साईं?
0: हा हा अलहमदुल्ला दुआ लॻी पई आहे। तव्हां पठाण खान पटके वारे साहब ऐं अव्हांजे दोस्तनि जूं दुआऊं आहिनि। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: हा अलाह तव्हांखे शाद आबाद रखे हमेशह। अव्हां सां गॾु दोस्त आहिनि शौकत जखणी आहे रामत जखणी आहे ॿ टे दोस्त फोटो कोसो उन खां अलावा नूर अहमद ज़ातणी आहे
0: जी टोड़ा
1: खान मरी जेका क्रिकेट ॿुधनि था खोड़ सलाम मोहबतूं।
0: तमामु घणियूं मोहबतूं तव्हां जूं। तव्हां पहिरियों दफ़ो कॉल कई सच पुछो दिलि ॾाढी ख़ुशि थी।
1: जी सर जी बिल्कुलु बिल्कुलु इनशाह मां कॉल कंदो रहंदो अलाह ख़ैरु कंदो सर।
0: कुर्ब साईं
1: सर
0: कुर्ब साईं ख़ुशि हुजो
1: महिरबानी मोहबतूं मोहबतूं पहिरां
0: मोहबतूं मोहबतूं। जी जनाब पठाण खान पटके वारे साहब जी कॉल लॻी वई ऐं वाह वाह थी वई। ॾिसंदासीं त हाणे कॉल ते कहिड़ो असां वटि बाक़ी आहिनि नव मिंट लॻी 51 मिंट थिया आहिनि। नवनि मिंटनि जो बाक़ी साथ साज़ ऐं आवाज़ जो साथ यूनिस बकारी जे वञण जो साथ ओके जनाब कॉल ते ॾिसंदासीं केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अदा।
0: केर साहब ऐं किथां खां? छा हाल आहे कुर्बान अली खासकेली साहब? खुश आयो ठीक आहियो चङा भला मतारा जोड़ ॿार बच्चा टंगड़े में? हा अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? वालेकुम असलाम। भला देर सां कॉल छो लॻी आहे तव्हांजी? किथे गैर हाज़िर हुआ केॾा घुमण विया?
2: गैर हाज़िर हाणे माथिरी आहे जेको चैनल आहे उन

0: जी तू थोरो ख्याल कंदो कर न कैसा गाल कंदो कर कॉल ते दिसुंदा के रहलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केर साहब है किथा खा
1: ले यार अली कलोड़ो कंडियारे खा
0: छा हाल है कलोड़ा साहब खुश आयो ठीक आयो चंगा भला
1: अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है ता बुदायो
0: अल्हम्दुलिल्लाह वहां जी दुआ लगी पई है वहां से कर बियो केर पे बुदे
1: मुझो बाबा मामा अमीन कलोरो निसार कलोरो अफजल कलोरो जेके भाईर धनी बुदांदा उन जे सबने के सलाम छोरे टाइम छोरवा
0: किरोड़े कुर्ब मिठा मानू किरोड़े कुर्ब ता जा मोहबतूं मोहबतूं कलोड़ो साहब यकीनन वक्त जी नज़ाकत के समझे तो हिकड़ी कॉल वधीक अटेंड करे था वटू निस्तासी कॉल ते केर आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके जनाब कॉल ते आवाज़ न पियो अचे इन जे करे कॉल ड्रॉप करणी पइजी वई मजबूरन

0: It's 7 PM. It's 7 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: फील्ड मार्शल असां अमरीकी अफगान जंग कमीशन जे वफद जी मुलाकात शुमाइला एन चौधरी ऐं डॉक्टर कोलन एफ जैक्सन जी क्यादत में वफद GHQ पहुतो. ISPR पहुचे मुलाकात में गॾियल दिलचस्पी पाकिस्तान जी हिमायत इलाक़ाई सिक्योरिटी अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ऐं कमीशन जे कम बाबति मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं. फील्ड मार्शल अफ़गानिस्तान तकरार सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं हुन जे असरनि ते मौक़िफ़ पेश कंदे पाकिस्तान खे दरपेश चैलेंजेस खां आगाह कयो. अमरीकी वफद अफ़गान तकरार दौरान पाकिस्तान जे किरदार ऐं क़ुर्बानीनि जो एतिराफ़ कंदे इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तेहकाम में पाकिस्तान किरदार जी साराह कई.
5: मगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ. अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी टीम शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा. ये कहते हैं कि मैं और खतरनाक बन जाऊंगा. मैं आज इसको इस KPK से और इस पेशावर से ये कहना चाहता हूँ कि अफरीदी साहब आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, वही सलाखों के अंदर होंगे. जो लूट मार आपने किए उसका हिसाब किताब आपको देना होगा. जो आईनी खिलाफ वर्जी आपने किए और कर रहे हैं उसका हिसाब किताब आपको देना होगा. जो आपने पहले से वही नौमाई और जो भी वाकयात किए उसका हिसाब किताब भी आपको देना होगा.
4: खैबर पख्तूनख्वा में वड़ो वजीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लगंदी, वफाकी हुकूमत जी मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल. कानून वारे वफाकी वजीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त KPA में इमरजेंसी लॻण घुर्जे ऐं लॻंदी बि. आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं त सभु कुझु थी वेंदो. इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे. वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम चयो आहे त KPA में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि. KPA में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो. गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सुहेल आफ़रीदी न हलंदो.

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाए खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छडायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। तेलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: जी जान तारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आईं जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम, हर अच्छे कॉस्मेटिक

0: या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1100।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: It's 8 p.m. This time check is brought to you by D Skin.

আসসালামু আলাইকুম মেহেরপুর। প্রোগ্রাম মিল্কবিউটি

मिल्क राइस ब्यूटी शो सुनने वाले तमाम सभिनी दोस्तनि खे वेलकम भलीकार ख़ुश आमदीद प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु आहियां आबिद चौहान आहियां मां ॿुधी रहियो जी एफ एम 94 मेहराबपुर

जी दोस्तों, उम्मीद त अव्हां सभी खैर आफ़ियत सां हूंदो, पंहिंजे बचड़नि सां गॾु शादो आबाद हूंदो, अलाह कंदो हमेशह मुस्कराईंदा रहंदो। ऐं हिन सां गॾो गॾु ॿुधंदा रहंदो जी एफ एम 94 मैरापुर मिल्क राइस ब्यूटी शो विद आबिद चौहान। दोस्तों, मां नसीहतूं तमामु घटि कंदो आहियां, छाकाणि त मां पंहिंजो को एतिरो पंहिंजे पाण खे पारसा कोन सम्झंदो आहे, पर जेके अक़बाले ज़रीन हूंदा आहिनि कुझु ॾाहनि जा, कुझु वॾड़नि जा, त उन्हनि मूजिबि ज़िंदगी गुज़ारिजे, छाकाणि त बिना कंहिं उस्ताद जे, बिना कंहिं तरबियत जे, बिना कंहिं कंहिंजे प्रचार जे, उहो लाइफ जेको आहे गुज़ारणु पंहिंजे मतिलबु पंहिंजे वाट थी वेंदी आहे, पंहिंजे दग सां थी वेंदी आहे। हिकिड़ो पाथ हूंदो आहे, उहो जेको आहे त मिलंदो ईंदो आहे, उन वे सां पोइ पंहिंजी खोजना बि कबी आहे। अॻे पाण जेको आहे त वॾड़नि जी महफ़िल में कुझु वधीक वेंदासीं, हींअर जेको आहे त एंड्रॉइड या मोबाइल या जेको बि इंटरनेट जो सिस्टम आहे, सिलसिलो आहे, उहो वधीक थी वियो आहे। हींअर माण्हू पंहिंजनि सां गॾु घटि पियो वेहे ऐं जेको आहे त मोबाइल ते टाइम वधीक पियो कंज्यूम करे। शायदि मूं अॻ में बि ज़िक्र कयो हुजे त जिते इंटरनेट जा जदीद उन्हनि जा फ़ाइदा आहिनि, त उते उन्हनि जा नुक़सानात बि आहिनि। हाणे इहो असांजे मथां आहे त असां उन जे फ़ाइदे लाइ जेको आहे त कंज्यूम कयूं, या जेको आहे त फ़क़ति जेको आहे त वेस्ट ऑफ टाइम लाइ इस्तेमालु कयूं। हाणे जेकॾहिं जेके दोस्त इहो ॿुधी करे इहे सम्झनि त जेको आहे इंटरटेनमेंट खे साईं जन जेको आहे त ग़लति चई रहिया आहिनि, ईअं हरगिज़ बि न आहे। इंटरटेनमेंट ज़िंदगी जो हिसो आहे, इंटरटेनमेंट खां सवाइ कुझु बि न आहे। इहे आऊं जेको अव्हां जे साम्हूं जेको आहे त मतिलबु अव्हां जी समातनि ताईं पंहिंजी आवाज़, पंहिंजो पैगाम पहुचाए रहियो आहे, इहो बि इंटरनेट जे वसीले आहे। जेकॾहिं असां जेका नशरियात आहे त उहा टेक्नोलॉजी जे ज़रिए आहे, त पोइ टेक्नोलॉजी खे असां ग़लति कोन था पिया चई सघूं। पाकिस्तान में कंहिं दौरो हुकूमत में जॾहिं वी सी आर खे मुतारिफ़ु पियो करायो वञे फस्ट टेक्नोलॉजी, जेकॾहिं हाणे जेके जेंज़ीज़ आहिनि उन्हनि खे त वी सी आर जी ख़बर बि कोन हूंदी। जॾहिं वी सी आर खे इंट्रोड्यूस पियो करायो वञे त पोइ स्पेशली मज़हबी माण्हू या ॿिया मखाते फ़िक्र सां कुझु माण्हू तालुक़ु रखंदड़ उन तब्दीलीअ खे एक्सेप्ट कोन पिया कनि ऐं चवनि पिया त इहा हिकिड़ी का नेगेटिव शइ, का भला, का मुसीबत, का गुनाह वारी अहिड़ी शइ अची रही आहे। दैन पोइ जेको आहे उन वक़्त जे हुकुमरान इहो कयो त तमामु तर मकातब फ़िक्र जे उल्मा प्लस सिविल सोसाइटी जे माण्हुनि खे घुराए करे हिकिड़ी मीटिंग कोठ कराई वई, जंहिं इजलास में जेको आहे त उते अवेलेबल कराई वई हिकिड़ी वॾी स्क्रीन, जिते तमामु मकातिब फ़िक्र जा उल्मा प्लस में आवाम मौजूदु हुयो वॾी स्क्रीन ते। मतिलबु उन वक़्त जे दौर में जेको बि हुई, टेलीविज़न हुई, पर्दो हुयो, कुझु बि हुयो, उहो घुराए करे ऐं वी सी आर उन सां प्लग इन करे ऐं कैसेट जेका लॻाई वई। हाणे कैसेट जॾहिं उहा प्लग इन थी त पोइ डेफिनेटली फस्ट स्टेप उन्हनि रखियो त इहो पहलू असां हिननि खे पहिरियों ॾेखारियूं, जंहिं पहलूअ ते हिननि जो बाहि भरी पई आहे त हीअ नेगेटिव शइ आहे, इहा मांधाण मचाईंदी मुल्क में, त उनमें बिल्कुलु डांसिंग प्रोग्राम, नाच गानो, ॿियूं टियूं शयूं ॾेखारियूं, जिन ते माण्हुनि काफ़ी खोड़ सारनि जेको आहे त अहिड़ा कलमात चया त अस्तग़फ़िरुल्लाह, इहे तमामु दजाल आहे, तमामु शइ जेको आहे। त छाकाणि त माण्हूअ जो ज़हन जेको टेक्नोलॉजी आहे या तब्दीली आहे उनखे जल्दीअ सां क़बूलींदो नाहे, छो त हुनजी हिकिड़ी नंढड़ी मिसाल विच में ॾींदो वञा, हूअ एग्ज़ाम्पल पंहिंजी जॻह ते असां ॿुधाईंदा हलंदासीं अव्हांखे। नंढड़ी एग्ज़ाम्पल इहा आहे त जॾहिं असां जेको बटण वारे, कीपैड वारे मोबाइल खां कन्वर्ट थी करे, जेके मुंहिंजे हम एज या मुंहिंजे जिन उहो एरा ॾिठो, त पोइ उहे वञी रहिया, त उन्हनि लाइ उहो टफ पियो लॻे त टच मोबाइल यूज़ करणु असांखे मसलो पियो लॻे, त हू असांखे बटण ईज़ी पिया लॻनि, जॾहिं त उहे बटण तमामु टफ हूंदा। हिकिड़े बटण में टे चार भेरा असां दॿाईंदासीं त तॾहिं वञी ए बी सी जो ऑप्शन ईंदो हुयो। एनीवेज़ उतां कंटिन्यू कयूं था जिते उहो सिलसिलो छॾियोसीं, त उहो घुरायो वियो त सभिनी चयो त ग़लति आहे, गुनाह आहे, हीअ त तमामु जेको आहे त ग़लति कंदो। उहा कैसेट कढी वई, हुननि चयो, ऑडर ॾिनो त बाबा हीअ ॿी कैसेट लॻाए। जॾहिं ॿी कैसेट लॻाई वई त उन कैसेट जो पहलू रुख ई कुझु ॿियो हो। हाणे उन टाइम उन कैसेट जो ॿिए जो पहलू इहो हो त हजो ज़ियारत, क़ुरान जी तिलावत ऐं ॿियो टियां घणियूं शयूं जेको आहे त पाकीज़ा, जिन खे सम्झो वञे थो आहिनि बि, उहे हलायूं वयूं, त माण्हुनि सभिनी चयो सुभान अल्लाह। देन उन वक़्त जो हुकुमरान
सभी के वह म्यूट कराए बंद कराए पैंजी स्पीच पैंजो भाषण पैंजो लेक्चर देण स्टार्ट कियो त VCR ही टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक एक माइंड आहे ब्रेन आहे तहां उन दिमाग में पैंजे में ब्रेन में जेका शय रखो बई शयूं कैसेटूं हथ में रखें एकड़ी जिन के हू नेगेटिव पे समझन एकड़ी जिन के हू पॉजिटिव भलो पे समझन चई ही उन में हलायो तहां पैंजे दिमाग में मतलब जी सोच हुंदी आ असां जी तो वो सोच अंदर को नेगेटिव रखे को पॉजिटिव रखे पो अड़े तरीके से जी खुदा ताला चयो आहे त खैर ए शर जो आता है वो बई पैंजे मथान त कें शैतान जो साइड दो वठे पासो या को रहमान जो पासो दो वठे सो खैर ये गालियों वड़ा भाषण वड़ा लेक्चरन असां यो ही चौंदासे त वरणन सा वेहण जो को महफिल आहे आदाब आहे उन के कंटिन्यू रख जे आई वरणन ने रिक्वेस्ट कंदासे छाकाण त मोस्टली मुजो प्रोग्राम जो को वड़ा बुधी रहया हुंदा नंढड़ा त पंहिंजी उन इंटरनेट जी दुनिया में गायबन ऐं मैच्योरिटी ईंदी आहे त पोइ कुझु बाद में ॻोल्हींदा आहिनि त वरणा बि असां सां हूंदा हुआ वरणा उहे काॾे विया सो वॾनि ते बि फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजे नंढड़नि सां गॾु जेको आहे त उन्हनि खे वक़्तु ॾियनि टाइम ॾियनि छाकाणि जो गेप न अचे ऐं जॾहिं उहो गेप वधी थो वञे त पोइ जेको आहे त देरि थी वञे टॉपिक अञा ड्रिघो आहे फ़िलहालु मूं शार्ट कंदे हिन खे अव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त मिल्क राइस ब्यूटी शो तमामु ज़बरदस्तु रिस्पॉन्स मिली रहियो आहे अव्हां जो मान मुहबतूं मिली रहियूं आहिनि ज़फ़र इक़बाल साहिबु जो मूंखे प्रेम पत्र अची रहिया हूंदा आहिनि ऐं उमेदु कयां थो त उन जा प्रेम पत्र तॾहिं वधंदा मूरे उहे ईंदा मैसेज उहे प्यार मुहबत जा उहे सलाम जॾहिं अव्हांजो मूंखे रिस्पॉन्स मिलंदो अव्हां मूंखे मोट केतिरी था ॾियो ऐं प्रोडक्ट खे मोट केतिरी था ॾियो प्रोडक्ट जी दावा आहे त ख़ूबसूरत ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिलि जीत ले बेशक बिल्कुलु जॾहिं का हिकिड़ी सुठी शइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं त पोइ कंहिंजे घणे चवण जी ज़रूरत न पवंदी आहे पर मार्केटिंग हिकिड़ो ज़रूरी हिसो आहे अॼुकल्ह जे जदीद दौर में जॾहिं असां उन जी प्रचार न कंदासीं शइ अव्हांखे ॿुधाईंदा न हुआसीं त पोइ उहा शइ अव्हांजे अख खां ओझल जॾहिं रहंदी आहे त पोइ अव्हां उनजो यूज़ ई नथा कयो त पोइ तव्हांखे उन जी क़दुरु बि कोन हूंदी जी त पोइ क़दुरु त यादि आहियो जेके क़दुरदान महबूब दोस्त जेके दिलबर दिलि वारा मुंहिंजे शो खे बि मान ॾेई रहिया आहिनि ऐं जेको आहे त कंपनी जे प्रोडक्ट खे बि मान ॾेई रहिया आहिनि उन्हनि सभिनी जे नाम ऐं मलक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक़ जे नाम अॼोके प्रोग्राम जो आगाज़ इब्तिदा साइण आब्दा परवीन जे ख़ूबसूरत कलाम सां कंदासीं त पोइ अचो त गॾिजी करे साइण आब्दा परवीन जो ई कलाम इंजॉय कयूं

जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्यूटी शो के साथ, मैं हूं आबिद चौहान और आप सुन रहे हैं GFM 94 मैरापुर। जी दोस्तों, तो मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी प्यारी प्रोडक्ट्स हमारी, जिनको आपने रिस्पांस दिया, उनमें से शामिल है मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, और ये तमाम तर प्रोडक्ट्स आपके अपने शहर यानी कि मेहरापुर की शाही बाज़ार के अंदर अवेलेबल हैं।

जबलपुर के शाही बाजार के अंदर जिन जनरल स्टोर्स पे हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनमें से खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर और अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। और जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं वो जानते हैं कि अगर आपने टी करानी है, उनमें से किसी को ख्याल आता है, अचानक ली है या जिन्होंने हमसे कमिटमेंट की है, तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि आपने अवेलेबिलिटी के लिए या जो है कि हमारे क्रीम के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, फीडबैक के हवाले से आपने बात करनी होगी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0300 310 10। इस पर कॉल करके डेफिनेटली आपने बहुत ही एक प्यारे और अच्छे इंसान से बात करनी है, जो कि मलिक ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उनके साथ में एम सिद्दीक साहब होते हैं और आपके अपने शहर में

0: मिस थी वही अगेन असां ॿी कॉल करण जी कोशिशि कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां? गुलाम फारूक राजपर, वेलकम भलीकार, ख़ुश आमदीद। पहिरां कहिड़ा हालनि, ख़ुशि आहियो? अलाह जा अहसान राजपर साईं, अवां ॾियो हाल अहिवाल प्रोडक्ट जे हवाले सां। प्रोडक्ट इस्तेमालु कई कोन कई हिन महिल ताईं? जी
1: अधु कलाकु
0: वठी आया आहियो? देर असां बि करे छॾंदा आहियूं खोड़ कमनि में, पर देर न करणु घुरिजे चङनि कमनि में। बिल्कुलु बिल्कुलु, मूंखे यकीन आहे। ॿियो कीअं पई गुज़रे ज़िंदगी? छा चवण चाहींदो को प्यार जो पैगाम? असांजी प्रचार प्यार जी, अमन जी, मोहबत जी, प्यार जी हूंदी आहे। ॿियो को दोस्तनि जा नाम वग़ैरह शामिल करणु चाहींदो? दोस्तियूं मतिलबु रहियूं ई न आहिनि, बसि पंहिंजे बचड़नि सां दोस्तियूं आहिनि, इहो बि बहितरीन आहे। जी बचड़नि जा नाम शामिल कयो। सलामत हुजनि सभई हे महबूब मुंहिंजा, फरमाइश बि कंदव? फरमाइश बि कंदव काई? ठीकु, वॾी महिरबानी, लव यू, लख लाइ कुर्ब, थैंक यू। जी दोस्तो, पहिरें कॉलर जेको आहे त चयो त असांखे फरमाइश न, बसि असां सां ॻाल्हि ॿोल करणी हुई, बचड़नि जा नाम शामिल कयईं। ॿियो कॉलर ॾिसूं था। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां? लाल मोहम्मद मेहरापुर खां, वेलकम भलीकार, ख़ुश आमदीद। पहिरां कहिड़ा हालनि, ख़ुशि आहियो? अलाह जा साईं। लाल मोहम्मद साहब, मुंहिंजी मेमरी कुझु शॉर्ट अथव, मां वरी रिपीटेड उहे ई साॻिया लफ़्ज़ पुछंदो आहियां, त प्रोडक्ट जे हवाले सां का ॼाण या को इंफॉर्मेशन या वरिती अवां या यूज़ कयो पिया? अवां कहिड़ी वरिती, अवां कहिड़ी प्रोडक्ट वरिती हिन टिनी मज़ा? अच्छा, टई वरितव, एक्नी बि वरितव? वाह साईं, वाह वाह वाह, लाजवाब, ज़बरदस्त। कहिड़े जनरल स्टोर तां वरितव? कामरान मुगल खां। वाह साईं, वाह वाह, कामरान खे मुंहिंजा सलाम न ॾिनव छा? चांहि बि पीआरी? वाह साईं, वाह वाह वाह, न मूंखे सुञाणे पियो साईं कामरान। शाबस अथसि, वॾी महिरबानी। प्रोडक्ट जे हवाले सां फीडबैक अवां ॾिनो, बिल्कुलु इस्तेमालु कयो पिया ॿिनि ॾींहनि खां, ज़बरदस्त, बहितरीन आहे। इनशाला रिज़ल्ट मिलंदो ऐं मिली रहियो आहे तव्हांखे डायरेक्टली। छा चवणु चाहींदो? मां बि इहो ई चवण वारमि त ॿियनि दोस्तनि खे बि रिकमेंड कयो, ॿियनि खे बि सलाह बि ॾियो, चओ न बाबा इस्तेमालु कयो। ठीकु आहे, दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो?
1: प्यारो अलाह बचाए मला, वज़ीर अली आमर ऐं मिठू बलोचा सदर और आया करे जेके भी संगत बुधी रहा मुझे तरफा सभी के अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम साईं वडी मेहरबानी कुर्ब लख लाइक थैंक यू
1: साईं साईं साल जाने जो सुठो में सुठो गीत बुधा
0: के जो
1: जलाल जाने सर
0: ठीक है मुजा भाई जलाल हलाई था वडी मेहरबानी दोस्तों जी एफएम

0: हेलो जी दा, जो आवाज घट पे होते जी, क्या वेलकम भली यार प्यारा, कड़ा लन खुश आयो। अल्लाह जैसा दौं तहां भाईरन जू
1: तमाम जो साईं प्रोग्राम तमाम तमाम छुट्टो बेहतर पे लगे, तमाम फर्स्ट क्लास लगे। सही काल दादी दुखी जी लगे
0: काल हाने ये मोहब्बत उन तहां सबनी जो कॉल्स है असा पेरणी ते वेट पे के हूं सबनी जो तो काथे हैं मेरा पुरवारा। माशाल्लाह मेरा पुरवारा जागंदड़न जबरदस्त मोहब्बती प्यार भरया इंसान सजी सिंधरिया ओवरऑल प्यारा मानुन ए मेरा पुर जबरदस्त रिस्पांस रही रहा है। अवां असा जी प्रोडक्ट जी जान है का न वठण जी भी कोशिश कयो इस्तेमाल कर ॾिसो, मतलबु असां खां ॿुधो था त ख़बर पवे थी न छा लाइ आहे कहिड़े इस्तेमाल लाइ। त पोइ कॾहिं कॾहिं वञो था भला स्टोर ते? ठीकु आहे भाउ, अरबा ते बि असां गॾु हूंदासीं। असां हर कलर खां साॻी शइ पुछा कंदा आहियूं पहिरियों फीडबैक प्रोडक्ट जे लाइ, पोइ वरी पाण खे वणे त पोइ दोस्तनि खे बि रिकमेंड कयो। नालो शामिल कयो बिल्कुलु जी। ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ, ठीकु जी।
1: अब्दुल जबार चना साहब साईं,
0: सभिनी सरेड़नि खे मुंहिंजा इन्हनि खे सलाम प्यार मोहबतूं। ठीकु आहे प्यारा, प्रोग्राम ॿुधंदा रहो, वॾी महिरबानी। लख लाइक थोरा थोरा मोहबतूं, वॾी महिरबानी प्यारा। जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स तमामु प्यारियूं प्रोडक्ट्स, ज़बरदस्त फीडबैक रिज़ल्ट मिली रहियो आहे ऐं काफ़ी दोस्त जेको आहे त अवेयर्ड आहिनि, काफ़ी जेको आहे त नवां जेके आया आहिनि असां सां चुन कंदा, उन्हनि कमिटमेंट बि कई आहे, उहे वठंदा बि। कंपनी जी दावा आहे, प्रोडक्ट ठाहिण वारनि जी दावा आहे त 3 ॾींहनि में चहिरे ते गिलो आणींदी आहे, मतिलबु चहिरे ते ताज़गी आणींदी आहे, रौनक बख़्शींदी आहे, रंग साफ़ कंदी आहे, ख़ूबसूरती जो नज़र आहे, भरोसा जो दिलि जीत ले। वाक़ई भरोसो दिलि खटे थो पियो, अव्हां जी दिलूं खटियूं अथई ऐं अव्हां दिलूं दिलि खटी रहियो असांजी ऐं साईं ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक़ साहिब जी। त पोइ लाइन ते हिकिड़ो कॉलर मौजूदु आहे, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां खां? हलो, वालेकुम सलाम, सखी पीर मौला अली मदद, केरु साईं, किथां खां? रियाज़ हुसैन साईं, वेलकम भली कार, ख़ुश आमदीद, कहिड़ा हाल आहिनि प्यारा? प्रोग्राम बाक़ी इहे मोहबतूं वधी वियूं आहिनि कॉल्स, हालांकि हिकिड़ो स्टेशन आहे भर पासे तव्हांजो सॼो कनेक्टेड आहे मैरापुर, असांजो हिकिड़ो ॿियो प्रोग्राम हूंदो आहे, दोस्त ॿुधनि पिया ॿुधंदा आहिनि मैरापुर वारा, त उन में त खणी 8 स्टेशन हूंदा आहिनि, त उन में सम्झां थो त मां वधीक रश हुजे, पर हिन में तव्हांजो प्यारु एतिरो वधी वियो आहे जो हिन में ठीकु ठाक रश आहे। कंहिं डोरापा मूंखे इहे बि ॾिना त तव्हां काश तव्हां जेको आहे त लिसनर हुजो आहे ऐं जेको आहे त तव्हांखे अहसासु थिए आहे, पोइ त असांजी कॉल जॾहिं न लॻंदी आहे त पोइ छा असांजी दिलि ते गुज़रंदी आहे। मूं चयो यार मूंखे अहसासु आहे, जेकॾहिं तव्हां इहो अहसासु ॾियण लाइ मूंखे महसूसु कराइणु चाहियो था त पोइ असां चवंदासीं काश तव्हां मञा को आरजे हुजे आहे, पोइ इहे उहे बि ताना

0: हा ॿुधे हा त बाबा मुंहिंजी ॻाल्हि न खयई मुंहिंजी न खयई मजबूर हूंदो आहे इंसान ईअं नाहे त असां कॉल कंहिंजी न खणूं प्रोग्राम जो हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे जी बाबा बाबर शेख लाइ छा पैगाम हुयो
1: साईं बाबर शेख साहब असांजी ज़ात वारो हुयो पर हाणे तव्हां बि मुंहिंजे नानक मां आहियो
0: माशाल्लाह पर हुयो न बाबर शेख आहे अलहमदुल्ला अलाह वॾी हयाती ॾेसि हींअर ॿिए स्टूडियो मां उथी करे निकिरी ॿाहिरि वियो त मूंखे बि निगाह बीहर पई जी क्या सही आहे को ॿियो ईंदो ॿी कंहिं ज़ात वारो दोस्त ईंदो त हुनजो को वरी ॿियो कढी वठंदो रिश्तो को पुफड़ को मासी ठीकु सॼे सभु सभु मोहबती माण्हू आहिनि ॻंढिया पिया आहिनि जुड़िया पिया आहिनि हिक ॿिए सां मां तव्हां हिते अचो त असां पीआईंदासीं एॾे ई मां आयुमि त पोइ सरेआम असां कोई न कोई असां पैगाम छॾे करे पोइ ईंदासीं ज़फ़र इक़बाल साहिब सां मिली करे उते जेको आहे वेही करे फेसबुक आई डी ते असां पंहिंजो पैगाम छॾींदासीं असां अवेलेबल आहियूं या अचां थो अॼु पोइ वरी मुलाकातूं थी वेंदियूं दुआ दुआ दुआ गीत रेडी आहे डेडिकेट कंदासीं दोस्तनि जा नाम खणी छॾियो माशाल्लाह साईं माशाल्लाह सलामत हुजनि सभिनी खे मुंहिंजो प्यार ऐं सलाम कुर्ब साईं वालेकुम सलाम सखी पीर मौला वॾी महिरबानी मोहबतूं जी दोस्तो जी दोस्तो मिल्क राइस ब्यूटी शो सां गॾु मां आहियां आबिद चौहान ऐं अवां ॿुधी रहियो जीए एफएम 94 मेहराबपुर त मेहराबपुर वारो अवां खे मिल्क राइस जूं इहे ज़बरदस्त प्यारियूं प्यारियूं ख़ूबसूरत प्रोडक्ट्स मिलंदियूं अवां जे पंहिंजे शहर शाही बाज़ारि मंझां जंहिं मंझां जनरल स्टोर्स मंझां पहिरीं फहिरिस्त में लिस्ट में शामिलु आहिनि जनरल स्टोर ख़ुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर फैज़ान जनरल स्टोर मेहराबपुर कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहराबपुर हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर ॾाढी ज़बरदस्त प्यार मोहबत मान आहे अव्हांजो असांजो इहो ई चवणु आहे त कंहिं बि जनरल स्टोर तां ख़रीद कयो जेको अव्हां खे इन्हनि मंझां सवलो मिले पर जंहिं सां बि मिलो मुंहिंजो प्यार मुंहिंजो मोहबत मुंहिंजा सलाम लाज़मी ॾिजोसि ऐं बदिले में जेको प्यार मोहबत सलाम मिले उहे सांढे करे मूं ताईं साॻी प्रोग्राम में शामिलु कजो जी बिल्कुलु दोस्तो पंहिंजो अव्हांजो ऐं मुंहिंजो साथ रहंदो आहे 9 वॻे ताईं ऐं उन खां पोइ वरी असां 9 खां 11 ताईं जुड़ंदा आहियूं असां हिकिड़े ॿिए प्रोग्राम में उन में बि काफ़ी अव्हांजे शहर जे दोस्तनि जूं कॉल्स ईंदियूं आहिनि पर एतिरियूं अव्हांजे शहर जूं न कनेक्ट थी सघंदियूं छाकाणि त ॿिया शहर बि कनेक्टेड हूंदा आहिनि पोइ का कॉल किथां का कॉल किथां मुंहिंजे लाइ सभई सिर जा साईं अचो त हिकिड़े ख़ूबसूरत ट्रेक न वधूं था ट्रेक खां पोइ वरी अव्हांजी फ़ोन कॉल्स अटेंड कंदासीं फ़ोन कॉल्स करण लाइ जेके न्यू दोस्त आहिनि जिन ट्यून हींअर कयो आहे रेडी उन्हनि खे नंबर ॿुधाईंदो हलां असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0393 6 67 अचो त जलाल चांडीअ जो ख़ूबसूरत आवाज़ में हीअ ट्रेक ॿुधूं

0: जी वेलकम बैक प्रोग्राम मिल्क राइस ब्रिटिश हो संग आऊं है आबिद चौहान है मैं बुधी रहा जी एफएम 94 मेहरापुर जी दोस्तों मिल्क राइस प्रोडक्ट बिल्कुल बाकमाल है जबरदस्त आए हैं जड़ा मानू आन लाजवाब उन प्रोडक्ट भी तमाम प्यारी आंदी आ जिन इस्तेमाल कई है इन माल तीन उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स बुधी कर समझा तो जिन दोस्त अजा तीन इस्तेमाल न कई है उन्होंने फूरन जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करण घुर्जे कुछ दोस्त देर थी वही अस वी नियासी देर अज प्रोग्राम कदे अवं तई यहाँ प्रचार कदे मुख्य काफ़ी डेज थी नियर अबाउट वन मंथ थेवार है तो वाकई टू लेट आए मीन्स देर फकत जो सुबह का शाम के ना चाहबो बल्कि ही खुद देर में है सो प्रोडक्ट अवेलेबल है या तो बेहतर गाल है तमाम सुन जनरल स्टोर्स से अवेलेबल है जै वक्त कें शी कमी है शॉर्टेज थी तो वरी जो अना वह में तकलीफ भी थी शे तमाम बेहतरीन हो असा गड लाइन से कॉलर मौजूद है प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदासे अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां हुसैन बख्सियाल नवाबी संगत खां वेलकम भलीकार खुश आमदीद प्यारा कड़ा हालन खुश आयो
1: मिठा
0: से अलहमदुलिल्लाह से आए सारे ना सई तवा की आयो ए वन दुआ गायब थी आओ हकीकत यो प्यार आ मोहब्बत आ पर इन में पो भी जी जी
1: कुछ आसान पे जा सर पे तो सही
0: जी जी
1: तो यकीन कयो त असी पांजो प्रोग्राम समझी आवा के पांजो समझी तो ब्रेक ही देनो त भले असा नवा काला रखे ने भले ओए भी शामिल थन
0: सही सही सही
1: बिल्कुल प्रोग्राम बताऊ का
0: या गल भी तमाम प्यारी कही हां
1: ये नवा काला रखे ने उन जो गाल आवा सा
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल यह तो वाकई तंजाब की इंतहा कर छी तो एतरी प्यार मोहब्बत मान पंजाब तो तुम तो साई से नवा कॉलर भी शामिल थे जुड़न और उ भी असो प्रोग्राम अस बुदूँ था फीडबैक मजो तो अचे जबरदस्त
1: यकीन कयो त छंछर ॾींहं मां पंहिंजी संगत खे ब्रेक ॾियारी अॼु को बि असांजी संगत वारो शामिल तव्हां प्रोग्राम ॿुधो त साईं जे प्रोग्राम में असांजा नवां कॉलर बि अचनि
0: हक़ीक़त आहिनि अचनि था काफ़ी हींअर बि जेको आहे कॉल कंटिन्यू मथां हली रही आहे लख थो राम आहे अहिड़ी ज़बरदस्त सोच रखी
1: हा बिल्कुलु सर असांखे त पंहिंजो प्रोग्राम आहे अने हिन प्रोग्राम खे असां अञा पॉपुलर करणु चाहियूं था प्रोग्राम अञा असांजो मशहूरु थिए
0: तबलीग सागी हिकड़ी प्रचार भी रहंदी त प्रोडक्ट जो परचेज करे इस्तेमाल कनि त कंपनी जो दावा है त टिनि ॾींहनि में जेको आहे त उहो चेहरे ते ताज़गी आणे थी ऐं रिज़ल्ट अवां जहिड़नि दोस्तनि मां मिली रहियो
1: आहे
0: बिल्कुल ॾिसो न जॾहिं हिकिड़ी प्रोडक्ट रिज़ल्ट ॾिए थी लॻंदा
1: आहिनि
0: कमाल करे छॾियो पोइ त तव्हां साईं ज़फ़र इक़बाल साहब सां राबितो करे तव्हां सेल्समैन ई स्टार्ट कयो प्रॉपरली सेल्समैन वारो कम कयो हक़ीक़त असांजी मोहब्बत में
1: हा बिल्कुलु
0: न साईं बिल्कुल मूसां त तव्हांजी मोहबत मान प्यार चाह आहे। असां प्रचार जंहिंजी कयूं था उहा कंपनी जे दावा मूजिब कयूं था ऐं कंपनी रिज़ल्ट ॾेई रही आहे त बहितर आहे, ज़बरदस्त आहे, उहो त प्लस पॉइंट आहे।
1: साईं बिल्कुल अव्हांखे पहिरीं फीडबैक ॾिनो आहे न, मां त पंहिंजे घर में यूज़ कयां थो न साईं, मां तव्हांजी यकीन ॾियारे पहिरीं तारीख़ पंहिंजे लाइ वरी वठणु ईंदो।
0: सही सही,
1: हा मां पंहिंजे घर जे लाइ पहिरीं तारीख़ वरी मां इनशा ताला इहो प्रोजेक्ट वठणु ईंदुसि ऐं असीं वरी यूज़ दुबारा कंदासीं।
0: माना
1: हिकिड़ी खपे ई न त ॿी अची वञे।
0: कमाल आहे, कमाल आहे।
1: हा बिल्कुल बिल्कुल, नवाबी संगत वारा उहो बि सही, नवाबी ऐं गुलाबी संगत वारा जेके आहिनि ॿई ग्रुप जेको वाइदो कंदा आहिनि जिन सां दोस्ती रखंदा निभाए ॼाणींदा आहिनि।
0: नाव शामिल कयो दोस्तनि जा भला।
1: हा बिल्कुल सर, असांजा दोस्त नवाबी संगत मां एजाज़ प्रोग्राम ॿुधे, असलम चना ॿुधे थो, मुनीर अमन सियाल ऐं गुलाबी संगत वारा बि ॿुधनि था, मुंहिंजा हमदर्द हुसैन मिसरो ॿुधे थो, बाक़ी जेके दोस्त गुलाबी संगत वारा ऐं नवाबी संगत वारा प्रोग्राम ॿुधनि था,
0: वॾी महिरबानी साईं। वालेकुम सलाम, अव्हांजी संगत खे मुंहिंजा सलाम, खोड़ सारो प्यार मोहबत।

0: जी दोस्तों, असां सां गॾु कॉलर आहिनि मौजूदु, शामिल कंदासीं हिकिड़ी ॿी कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। केर प्यारा, किथां खां? अख़्तियार हुसैन खोखर, ॻोठ वली मोहम्मद ख़ान खोखर खां। वेलकम भलीकार, ख़ुश आमदीद। प्यारा, कहिड़ा हाल? ख़ुशि आहियो?
1: मां
0: दुआऊं अलाह सां। अवां जी हे काएं भेरे आहे प्रोग्राम में कॉल शामिल? पहिरीं कॉल आहे। मां तॾहिं इहो पुछा कयुमि खोड़ सरनि खां, मूं कोन पुछा कई अॼु। मूंखे नाव अहिड़ो लॻो ज़हन ते त मां चयो हीअ फस्ट टाइम लॻे थी मूंसां ॻाल्हि ॿोल थी रही आहे। कीअं पियो, कॾहिं खां ॿुधो पिया प्रोग्राम? ॿियों टियों ॾींहुं आहे। कीअं पियो लॻे प्रोग्राम? ऐं पोइ ख़बर हूंदव त हीअ प्रोग्राम कहिड़े मुतलिक़ आहे? स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम
1: आहे।
0: जी जी, मिल्क राइस, मिल्क राइस जूं खोड़ सारियूं ख़ूबसूरत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आहिनि, जंहिं मज़ा मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम आहे, मिल्क राइस ब्यूटी सोप आहे, ऐं मिल्क राइस एक्नी क्रीम आहे। मतिलबु दाणा जेके दाग़ दॿा हूंदा आहिनि, मोइड़ा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे ख़तमु करण लाइ कमु कंदी आहे। असां हूअं बि जेको आहे त का न का प्रोडक्ट नॉर्मली इस्तेमालु कंदा आहियूं। हिन सां वरी छा आहे त वरी चहिरे सां रंगत ऐं गिलो सां गॾो गॾु जेको आहे त हीअ एक्नी यूज़ कंदासीं, उहो दाणा बि दाग़ बि उहे बि हलिया वेंदा आहिनि। पर जंहिंखे हुजनि, न हुजनि त पोइ साबुण ऐं क्रीम जेको आहे उहा त ज़बरदस्त फार्मूलो आहे। कंपनी जी दावा आहे त 3 ॾींहनि में रिज़ल्ट ॾींदी आहे। काफ़ी दोस्तनि जो अवां रिव्यूज़ ॿुधी चुका हूंदव, सो रुगो असांजी ज़ुबान ते माना न हलो, तव्हां दोस्तनि जा रिव्यू बि ॿुधो ऐं पाण इस्तेमालु करे ॾिसो। इस्तेमालु करण खां पोइ जेको आहे तव्हांजो रिव्यूज़ वरी असां ॿुधंदासीं। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी। लख लाइ छा चवणु चाहींदो? ॿियो को दोस्तनि जा नाम शामिल या का फ़रमाइश? जी बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं।
1: अहिड़ो मुठा मिठड़ा मिठो थो ॻाल्हाई।
0: ठीकु थी वियो, ठीकु थी वियो। डेडिकेट कंहिंखे कंदव? कंहिंखे अर्पण चाहींदव? कंहिंजे नाम करणु चाहींदव?
1: पहिरियां तव्हांखे अर्पण चाहींदासीं।
0: वाह वाह वाह वाह, लख थोरा।
1: पोइ साईं रिज़वान अली शाह। ॿ मुंहिंजा नंढड़ा आहिनि, अहमद ऐं समद।
0: जी
1: बसि हाणे तव्हां जे लाइ आख़िरी शायर आहे। मूं सारी जे सुपरी अची जे हा
0: थैंक यू। कुर्ब साईं, लख लाइक मोहब्बतूं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।

0: जी दोस्तों, हिकु अधु कॉल शामिल कंदासीं, हुन खां पोइ वरी जेको आहे तव्हांजी फरमाइश अव्हां जे हुकुम जी तामील कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां? जी अदा, पिसंद अली जरवार पीर गाड़े खां वेलकम, भली कार, खुश आमदीद मुंहिंजा साईं, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? पिसंद अली प्रोग्राम पिसंद अचे पियो?
1: जी जी साईं,
0: सफ़ा बिल्कुल मूंखे इंतज़ार रहंदो त इस्तेमालु कयो, हुन खां पोइ रिज़ल्ट ॿुधायो। रिज़ल्ट न ॾे त पोइ असां तव्हांखे चऊं बि न, ठीकु आहे न मुंहिंजा भाउ? रिज़ल्ट जो रिस्पॉन्स ॾेई रही आहे त पोइ असांखे ख़रीद करणु घुरिजे, पोइ त कंपनी दावा आहे, हुनखे दलील ॾियण जो मौक़ो ॾियूं त टिनि ॾींहनि में रिज़ल्ट ॾींदी, हू चवनि था, ठीकु आहे न मुंहिंजा भाउ?
1: जी जी,
0: छा चवणु चाहींदो भला?
1: असांखे नूरदीन जो असांखे ॿुधायो।
0: नूरदीन जो छा आहे?
1: सोटल फ़क़ीर।
0: नूरदीन केरु आहे? मूंखे ज़हन में न आयो। न हूअ नूरदीन केरु आहे? नूरदीन ॾे पैसा आहिनि तव्हांजा कर्ज़ा या नूरदीन कीअं आहे? वात में त अची वियो त पोइ दिलि दिमाग़ में घुमे पियो, तॾहिं ज़ुबान ते अची वियो न। ज़हन अॻु में प्रोसेस कंदो आहे त मूंखे छा चवणो आहे। ज़हन
1: तमामु
0: नूरदीन जो नारे खे ॿुधायूं था। जी अदा,
1: जी बाबा, ॾाॾे जी फरमाइश आहे। वॾा
0: ॾाॾे जो नालो छा आहे? नूरदीन?
1: मंज़ूर
0: अली जरवार खे मुंहिंजा सलाम, पेरनि ते हथ भा।
1: जी जी साईं,
0: बिल्कुलु असां नूरदीन जो कलाम ॻोल्हींदासीं, मिली वञे को शल हुजे को नूरदीन। धमाल वरी कहिड़ी? कैची ॿुधायूं मुंहिंजा राणा? हा हलो
1: जी बाबा।
0: न कैची ॿुधायूं? धमाल
1: नूरदीन जी बाबा।
0: नूरदीन यार, नूरदीन मूंखे कंफ्यूज करे छॾियो। दोस्तनि खां बि पुछूं था, ॿिया बि दोस्त वेटिंग में आहिनि लाइन में, कॉल कंदा पोइ इहो नूरदीन जी धमाल ॻोल्हियूं था, पोइ दोस्तनि जे नाम कंदासीं, ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ? थैंक यू, ओके, अलाह हाफ़िज़। जी दोस्तो, तव्हां ॿुधी रहिया आहियो त पोइ हिकिड़े ख़ूबसूरत ट्रैक ते वेंदासीं। शमर अली मीराली जी तमामु ख़ूबसूरत आवाज़ में अहिड़ो मूंसां मिठड़ा मिठो पियो ॻाल्हाईं। उनखां पोइ टाइम वक़्तु बचियो त चंद कॉल्स बि हूंदियूं ऐं नूरदीन जी धमाल बि ॿुधंदासीं।

0: मिल्क राइस ब्यूटी जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उहे उन्हनि में शामिलु मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, इहे तमामु ख़ूबसूरत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स जिन जी दावा आहे कंपनी त 10 ॾींहनि में अव्हांजे चहिरे ते ग्लो ऐं ताज़गी आणे थी, ख़ूबसूरती जो नज़र आहे, भरोसा जो दिलि जीत ले, बिल्कुलु जेको खटे रहियो आहे असांजे एतमाद ऐं अव्हां जो एतमाद खटे रहियो आहे ऐं अव्हां एतमाद करे रहिया आहियो प्रोडक्ट ते, प्रोडक्ट जे जेको आहे त ऑनर सी ओ मलिक ज़फ़र इक़बाल ऐं एम सिद्दीक़ पारां अव्हां सभिनी सॼणनि खे सलाम आहे, उन्हनि जो थैंक्स आहे अव्हां सभिनी लाइ। उन्हनि प्यार भरा टैक्स मोकिलिया, असांखे चयो त सभिनी दोस्तनि जा मशहूरु आहियूं जेके रिस्पॉन्स ॾेई रहिया आहिनि अव्हांजे तवसुल, अव्हांजे थ्रू प्रोग्राम जे थ्रू, ऐं प्रोग्राम खे अव्हां मान ॾेई रहिया आहियो, मां बेहद थोरातो आहियां। ख़ुशी जनरल स्टोर ते असांजी प्रोडक्ट इहा अवेलेबल आहे, ऐं फैज़ान जनरल स्टोर मेहरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहरापुर, हफ़ीज़ जनरल स्टोर मेहरापुर, कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर, जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर, अलकरम जनरल स्टोर मेहरापुर, ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अवेलेबिलिटी चाहियो था त उन लाइ अव्हां हेल्पलाइन ते कॉल कंदो, हेल्पलाइन नंबर आहे 0300 310 510 9। ऐं इन खां अलावा मूंसां तव्हांजी खोड़ सारी ॻाल्हि ॿोल कचहरी थींदी रही आहे, मोहबतूं प्यार अव्हांजो मान असांखे मिलंदो रहे, ऐं उमेदु कयूं था त अव्हां प्रोडक्ट जो फीडबैक मूंखे प्रॉपरली सुभाणे अञा वधीक ॾींदो। जिन दोस्तनि हिन महिल ताईं अञा बि प्रोडक्ट इस्तेमालु न कई आहे त उमेदु त उहे सुभाणे बाज़ारि ज़रूरु वेंदा ऐं वञी करे जंहिं बि जनरल स्टोर तां इहा प्रोडक्ट परचेज़ कंदा उनखे प्यार मुंहिंजा भाकुर पाए मुंहिंजा सलाम ॾींदो, ऐं उनजा सलाम मिलनि त सांडे अची करे मूंखे प्रोग्राम में सुभाणे ॿुधंदो। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान आबिद चौहान खे इजाज़त ॾींदा, वरी मिलंदासीं सुभाणे वरी साॻे प्रोग्राम सां गॾु। तेसि ताईं अव्हां इंजॉय कंदो हुई नूरदान जी, मुंहिंजो मतिलबु आहे नूर जहान जी ख़ूबसूरत धमाल, ॾाढा साईं जे नाव पिसंद अली साहब जे फ़रमाइश ते, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, ऐं मूंखे ॾींदा इजाज़त, सिंध सलामत, साध सलामत, अल्लाह निगेबान।
1: छोटे दुकानदारों के मुतालबात हुकूमत ने किए मंजूर, 20 करोड़ रुपए तक सालाना सेल वाले दुकानदारों के लिए।

0: बाद पार्टी की तैयारी न हुई। लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील थियण से पार्टी कमजोर थी है। केपी के अगूने वे वजीर अली अमीन गंडापुर चया है तो सूबे में वे वजीर की रिट न होने सबब वजीर मेंबर्स कारकुन के खंबे पे वे बानी के चवण से वे वजारत छी बीहर हुक्म मिलो तो बीहर वो वजीर थी सका तो। तहरीक तहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अक्टूबर से एहतजाज वाली सद की हिमायत कर छी। तर्जुमान अखुंडजादा हुसैन चो है तहरीक इंसाफ अपोजिशन इतिहाद जो हिस्सो है। तहरीक तहफ़ुज़ आईने पाकिस्तान पारा 4 अक्टूबर वे एहतजाज में भरपूर शिरकत कई वी 27 सेप्टूबर वे सद के सरबराही इजलास में अपोजिशन इतिहाद जो गडियल सद करार दिनों वो। बैरिस्टर गोहर के वाजे बुधा हो तो ये वक्त बीहर न इंद 27 सेप्टूबर का एक डी अहम है। ये वक्त पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल आईन की बालादस्ती ला इंतहाई अहम है।
1: असा आलात करन रहा जी सिंध का अपील था कि फिल फोर जो तो आदो अजी चाल के आदात को ने
2: आज असा के धमकी मिली रहो है आज असा के अगवा पे पोने
3: असा की जो पास मुआशरे जो आवाज आए मजलूम के ने इन जो को बात फरियाद न थी है किसे जो ने सदारत न थी है
4: डैनियल कल्चर जो आता 1 करोड़ तो भूंगो तलब करन था यो कातो जो कानून आ आगे कतक दीदा ने अगवा करे मुख्तलिफ होता का क्या वे दीदा
5: हक सच लिखण वाला सहाफी उन्हें पांजो सच न वणो इन के असाजे सहाफी बेपाक साहब के अगवा किया
6: बेपाक साहब की आजिम ख्याल उनकी फुल फोर आजाद सिंध पुलिस किथे निंड में सुतो पियो आ फुल का चोड़ो तो पे असाजे अगवा की सख्त लबदू मजम्मत ता कयो।
0: एटीएन न्यूज खानपुर मार के रिपोर्टर अजीम सियाल के अगवा के बड़ी थी वया पुलिस मुगवी सहाफी के बाजियाब कराने में मुकम्मल तौर से नाकाम बढ़ल पुलिस की कार्रवाई भी गाल महदूद अजीम सियाल की बाजियाबी लाए अमली कदम न खयों। अजीम सियाल की बाजियाबी लाए कलमधनी सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा धरना घोटकी नौशरो फिरोज गंबट उबावड़ो मीरपुर माथेलो ठरी मीरवा चक बख्शापुर भान सईदाबाद में एहतजाज किया।
7: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
8: मेहराबपुर भरपासे की अवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल के खर्च मां जान छो रोज के खर्च का बचो। A1 आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करो। स्पेयर पार्ट्स माहिर मकेनिक की सहूलत पिण मौजूद है। उन सिंध शादी हॉल से गडो गड A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आन। राबते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 आटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो। फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरला बीएड 2.5 साल जो दाखिलाऊँ शुरू थी वही है। जैसे तवाजो ख्वाब उस्ताद बनजन है तो ही बेहतरीन मौको हथन मां न वो। हाँ सिंध हुकूमत के तालीमी शोबे से लागापियल केतरन ई नौकरियों लाए बीएड डिग्री लाजमी बनजी रही है। तें करे अजु ही दाखिला वो पांजे टीचिंग कैरियर के मजबूत बुनियाद दियो। सिंध के कें भी शहर या जिले के तवा आसानी से दाखिला वी सो था। असा वट मौजूद हैं एयर कंडीशन क्लासरूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल खास ऑफर महदूद वक्त लाए आहे। तें करे अजु ही राबतो करो। ऑनलाइन अप्लाई लाए forwardcollege.pk वधिक जान लाए 0304-28274 ऑफिस तई एड्रेस पेट्रोलियम सर्विस के सामू वापड़ा कॉलोनी खैरपुर अजु ही दाखिला वो पैंजे मुस्तकबिल के महफूज बनायो एक कामयाब उस्ताद बनजन ना पेरियो कदम वधायो।
9: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जापानी स्ट्रेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को रेड करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेरा आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो फिर कराई
3: यार आजी का गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मस्त बुदा।
3: ऑफिस हलानी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाइ
7: 0301-328-36।
8: रामपुर के सुनते रहो जी FM 94।

जी ॻाल्हि करणी आहे, चंड ते महफ़िल सजायो, दिल जी ॻाल्हि करणी आहे। कराची खां कश्मीर कींझर खां कारूंझर ताईं सुहिणी सिंध वासियुनि खे आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम क़बूल पवे। प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान, ऐं अव्हां ॿुधी रहिया आहियो जीए एफएम नेटवर्क। GFM नेटवर्क ऐं दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मानायतनि, महबूबनि, दिलरुबा दोस्तनि, प्रिय प्यारनि खे वेलकम, भलीकार, ख़ुशामती।

हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं, अव्हां जी दिलनि मां धिकारिया विया हूं। हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं, अव्हां जी दिलनि मां धिकारिया विया हूं। असां पन वण जो हुआसीं दुनिया में, असां पन वण जो हुआसूं दुनिया में, वरियो वाओ पल सां बुहारिया विया हूं। विसारे छॾियो लोक आहे त छाहे, विसारे छॾियो लोक आहे त छाहे, मिटी माउ खां पर संभारिया विया हूं, हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं। असां हेठि पंहिंजा विछाणा विछाया, असां हेठि पंहिंजा विछाणा विछाया, वरी बि अंगण तां उथारिया विया हूं। असां हेठि पंहिंजा विछाणा विछाया, वरी बि अंगण तां उथारिया विया हूं। अञा साह आहिनि नसारियो अव्हां था, अञा साह आहिनि नसारियो अव्हां था, अॻे मौत खां ॼण त मारिया विया हूं, हयातीअ जे हूंदे विसारिया विया हूं। अञा साह आहे नसारियो अव्हां था, अॻे मौत खां ॼण त मारिया विया हूं, वरी शाहिदा वहम दिल में उथियो आहे, वरी शाहिदा वहम दिल में उथियो आहे, लॻे थो अव्हां खां पुकारिया विया हूं, हयातीअ जे हूंदे बीमारिया विया हूं, अव्हां जी दिलनि मां धिकारिया विया हूं।

दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि, सभिनी प्रीम प्यारनि जे नाव ही ख़ूबसूरत गीत सनम मारवी जे आवाज़ में का सार त लहबी आहे। अचो त गॾिजी गीत खे इंजॉय कयूं।

निगाहूं सदन थियूं नज़ारा सदन था निगाहूं सदन थियूं नज़ारा सदन था घणी देर खां प्यार प्यारा सदन था नथो जीउ धरती छॾे वेल काई नथो जीउ धरती छॾे वेल काई अमृता अखियुनि खे सितारा सॾनि था निगाहूं सॾनि थियूं नज़ारा सॾनि था।

मुठी माठ आहे जुबान सां त पंहिंजी, मुठी माठ आहे जुबान सां त पंहिंजी, अखियुनि खे अखियुनि जा इशारा सॾनि था। वञी डूर ॾाढो वसायो अझो थी, वञी डूर ॾाढो वसायो अझो थी, मगर तोखे ही पूह पारा सॾनि था, निगाहूं सॾनि थियूं, नज़ारा सॾनि था। वञी डूर ॾाढो वसायो अझो थी, मगर तोखे ही पूर पोह मगर तोखे ही पोह पारा सॾनि था, अवां सूंह जो समुझ आयो ओ साईं, अवां सूंह जो समुझ आयो ओ साईं, अवां खे सिकायल उञारा सॾनि था, निगाहूं सॾनि थियूं, नज़ारा सॾनि था। ॿुधी दाह तो कोन कंहिंजी बि दिलि जी, ॿुधी दाह तो कोन कंहिंजी बि दिलि जी, ख़ुदा साह तोखे दुखारा सॾनि था। वञी तो वसायो शहर शोर वारो, वञी तो वसायो शहर शोर वारो, वरी वर तोखे ॻोठ वारा सॾनि था। वञी तो वसायो शहर शोर वारो, वरी वर तोखे ॻोठ वारा सॾनि था, छॾे कीअं फितरत वञा शाहिदा मां, छॾे कीअं फितरत वञा शाहिदा मां, सिंधूअ जा सुभागा किनारा सॾनि था, निगाहूं सॾनि थियूं, नज़ारा सॾनि था, घणी देर खां प्यार प्यारा सॾनि था।

0: दोस्तों वक्त थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ वरी वरंदासीं, ॿुधंदा रहो GAFM नेटवर्क।
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुशख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोस पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहराबपुर, नालो आहे एतमाद जो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर ऐं सूमर।

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: दोस्तो बिना कें ताखीर जे यकीनन अवां खे भी इंतजार हुंदो ऐं मूंखे भी बेहद साॻी बेक़रारी बेसब्री सां साॻियो इंतज़ार तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कजे अवां सां खोड़ सारियूं दिलि जूं ॻाल्हियूं कजनि अवां जूं शिकायतूं बि ॿुधजनि अवां सां कुझु ॻाल्हियूं बि कजनि ऐं अवां जूं ॻाल्हियूं बि ॿुधजनि शिकायतुनि ते बिल्कुलु लिस्ट डिघी थी वेंदी पर जंहिं प्रीं प्यारे जी कॉल न लॻंदी आहे उन खां एडवांस में अॻु में ई हथु ॿधी माज़रत ऐं या जंहिंजी एॾी परेशानी एतिरी रश जे बावजूदु लॻी वेंदी आहे ऐं उहा वरी अटेंड न थींदी आहे छाकाणि त प्रोग्राम जे पैटर्न में जेकॾहिं असां अवां सां ॻाल्हि ॿोल न कयूं फ़क़ति टेलीफोन ऑपरेटर जो किरदारु अदा कयूं त पोइ उहो बि प्रोग्राम जी चस विञाए वेंदो प्रोग्राम जो पैटर्न अव्हां खे ख़बर आहे जेके दोस्त असांखे न्यू ट्यून करे रहिया आहिनि उन्हनि खे ख़बर हुजणु घुरिजे त असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03-000-11-3488। डेफिनेटली इन ते अवां कॉल कंदो कॉल अवां जूं हली रहियूं हूंदियूं प्रोग्राम जो पैटर्न इहो हूंदो आहे त पहिरियां असांजा इहे जेके 15 मिंटनि उहा अवां सां प्रोग्राम खे आगाज़ वठंदे इब्तिदा कंदे ख़ूबसूरत शाइरी ॿुधाईंदा ऐं मुख़्तलिफ़ शाइरनि जूं अॼु जेका असां चूंड शाइरी शामिलु कईसीं उहा मोहतरमा शाहिदा खोखर साहिबा जी आहे ऐं विच में अव्हां जे महबूबनि जी चूंड ऐं प्लस में अव्हां जा ज़ाती कलाम बि शामिलु कंदा रहंदा आहियूं ख़ैर ॻाल्हियूं त करण लाइ खोड़ सारियूं पर अव्हां जूं ॻाल्हियूं ॿुधण लाइ असां कंदासीं प्रोग्राम में कॉल शामिल त पोइ असां सां गॾु लाइन ते कॉलर शामिल आहिनि अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां
1: वालेकुम सलाम आबद भाई ख़ुशि आहियो तबियत सही आहे
0: दुआऊं अलाह जा एहसान केर पिया ॻाल्हायो किथां खां
1: ज़ुल्फ़िकार महर कुरेशी ॻोठ फ़ख़्र सां
0: ज़ुल्फ़िकार महर कुरेशी ॻोठ खां वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद पिया
1: मुंहिंजो
0: भाउ मुंहिंजो मासात आहे सलाम
1: मूंखे ईअं सम्झ में अची वई आयो त भाउ कमीश जेको
0: जेको पाड़े में वेठो आहे त ॿियो हुनजो निकिरी पवे पर ही त
1: मुंहिंजो
0: छा चवणु चाहींदो प्रोग्राम आहे जी दिलि जी ॻाल्हि कंदा
1: हुआसीं आयो
0: वाह वाह
1: कॾहिं कान कमाइण न कंहिं रेडियो आयो मोहबत महाराज न त कान वञिणो कीन हुयो महबूबनि जे नाले असांजा दोस्त प्रिपेरा जेके ॿुधनि था तव्हांखे तव्हांखे जेके
0: लख थोरा लख थोरा मोहबत ॿियो
1: ॿुधायो साईं तबियत सां
0: सही A1 दुआऊं फरमाइश करणु चाहींदो या को पैगाम ॾियणु
1: फरमाइश असां बिल्कुलु चवंदासीं त पोइ असांखे दलाल चांदी जो शौक़ु ॿुधायो ऐं बाक़ी जेके दोस्त सभु महबूब चेहरा आहिनि जेके ॿुधनि था पिया उहे सभु असांजा किरी प्यारा आहिनि सिंध में जेके ॿुधनि था जेसिताईं आवाज़ असांजो वञे पियो नेटवर्क जे ज़रिए उहे सभिनी जे लाइ असांजे लाइ महबत आहिनि सभई असांजा महबूब चेहरा
0: आहिनि
1: असांजी चयो त हिकिड़ी कान लॻे का भाउ सां कचहरी थिए
0: ज़रूरु
1: कचहरी दादा खमी थिए या तव्हां मासा त घर आहे साॻी
0: मुलाक़ात लाज़मी थी वेंदी
1: सलाम सॼी टीम खे
0: वालेकुम सलाम
1: जलाल पांडे
0: सलाम ॿुधायो प्यार ऐं सलाम अव्हां खे बि बिल्कुलु ॿुधंदा रहो प्रोग्राम जलाल शामिल कंदा थैंक यू।

0: पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
1: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03003319667।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: जी
1: मकन कुमार
0: जी
1: और प्रेमी सागर।
0: प्रेमी सागर आ नालो बुधल बुधल लगे तो आ जा ठीक आ आवा सा वरी करें कचरी थी दी न्यूज़ ब्रेक ते वनन खाग में एकड़ी फरमाइश पूरी कंदा से बड़ी मेहरबानी इन सभी महबूबन के मुझे तरफा भी सलाम नमस्ते हक मौजूद
1: यार बुधाई दो रुक्सार मेम जो प्रोग्राम
0: जी प्यारा
1: जिंदगी गुजार है
0: ठीक है बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी थैंक यू सर
1: लव यू थैंक यू
0: ओके अल्लाह बेहद मज़ो अची रहियो अवां सां ॻाल्हि ॿोल करे अवां जूं शायरियूं ॿुधे अवां जूं दिलि जूं ॻाल्हियूं ॿुधे ऐं प्लस में अवां खां गीत ग़ज़ल वायूं बि ॿुधी रहिया आहियूं सो वक़्तु आहे हींअर हिकिड़े फ़रमाइश जो ऐं फ़रमाइश सभ खां पहिरीं थी जलाल चांडी जे आवाज़ में को बि गीत त पोइ अवां सभिनी महबूबनि जे नाव स्पेशली जिन दोस्त फ़रमाइश कई उन ऐं उन जी सॼी संगत जे नाव जलाल चांडी जी आवाज़ में ख़ूबसूरत गीत कोन बच सां दर्द ते ॾे विच रो रो दम ॾे सां अचो त गॾिजी गीत खे इंजॉय कयूं

सूरत तू सादी सियाल वाके मैं एक दफा देखा बस मर वैसा वापस वैसा कौन वतन ते तलब तड़ी विच ते का बस मर वैसा कुछ न शबीर मचाई वैसा सखना सिर उड़ाने सा।

जी दोस्तों, वक्त जो है न्यूज़ ब्रेक जो आया और असर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक न्यूज़ ब्रेक ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वापस वरी वरंदा से बुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना फादी।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: इशू सुनने में वो जब रिक्वायर करेगा तो ये सारी चीजें।
1: मगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ, अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी शिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, कोई सलाह हम के अंदर होंगे।
2: खैबर पख्तूनख्वा में वॾो वज़ीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लॻंदी, वफ़ाक़ी हुकूमत जी मुशावरत आख़िरी मरहले में दाख़िल। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त केपीअ में इमरजेंसी लॻणु घुर्जे ऐं लॻंदी बि। आइन में घुर्बल ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं, सभु कुझु थींदो। इमरजेंसी बाबति आइन वाज़े आहे। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम चयो आहे त केपीअ में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि। केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो। गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सुहेल आफ़रीदी न हलंदो।
3: डेढ़ के बाद स्कूल भी नहीं जा सकता और ना कोई मुझे फोन कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहाँ पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटा है, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस किसी की। जो मेरा मौका पहले दिन था, जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है, वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो, पॉलिसी शिफ्ट लाओ। हमारे फौजी जवानों को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे आम सिविलियंस को, इसको मजीद जो है ये इस खून खराबे से बचाओ। इसमें पाकिस्तान की भी भलाई है, इसमें हम सब की भलाई है।
2: गवर्नर राज जी धमकन खान डिजण वारो न आया, कुर्सी खातिर पंजी नजरिए ता हथ न खणंदस। केपी जे वडे वजीर सुहेल आफरीदी चयो आहे तवामी मैंडेट खिलाफ केर भी नथो वनी सके।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।